और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सके, और तुम उन्हें देखते हो कि बज़ाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाके कुछ नहीं देखते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो।

شکر کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: جہازوں کی آمد ممکن ہوگی اور بندرگاہ کی
1: استعمال
0: ممکن ہوگی

وآله وسلم. إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. نسأل

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज पीर है, मुहर्रम अल हराम की 20 और जुलाई की 6 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। दिया है कि वो पायदार तरक्की के हुसूल के लिए अपने वतन से वाबस्तगी को मजबूत बनाए। जानिब से बैरून मुल्क से मसनी शहरत के हुसूल के लिए मायूस को हकीकत उनकी गिरती हुई साख को बचाने की एक नाकाम कोशिश है। गिलगित बल्तिस्तान का हलफ उठाएंगे। 2,32,000 से ज्यादा आज़मीन हज ने साल के हज की अदायगी के लिए अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है। रात लाल स्लम हरा कर खवातीन को टीटू क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। और फुटबॉल प्री क्वार्टर फाइनल। और अब खबरें तफसील के साथ। कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पेशावर अफराद के साथ तआवुन को मजबूत बनाने और इंसानी वसाइल की तरक्की में सरमायाकारी पर मुनहसर है। तो फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में पाकिस्तानी निजात शुमाली अमरीका के डॉक्टरों के एसोसिएशन के 49वें सालाना कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। कारोबारी अफराद और सरमायाकारों पर जोर दिया कि वे हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पायदार तरक्की, सेहत की देखभाल की जदीद कारी और माशी तब्दीली की जानब पाकिस्तान के सफर में फाल शराकत दार बने। वजीर

0: bathroom.
1: Yeah.

0: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups work, but not anymore. Get up to 13,000 plus expert cloud advisor to help your startup. Apply now. Applications close on July 10, 2026.
1: 101 FM. Big idea? Check. Fashion? Check. Lekin scale karne ke liye progress. Yeah. Skill mushkil pesh aati hai. Ignite under the Ministry of IT and Telecom. और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट जिससे आप अपने स्टार्टअप को ignite.org.pk पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।

0: शहबाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका एफएम रेडियो रेडियो पाकिस्तान कौन की आवाज।
1: टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाए तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: बिगारिया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप स्ट्रगल बट नॉट एनीमोर. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
0: Suror Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
3: So

0: Socks. And now you are tuned into
1: FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर वन और टियर टू के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।

बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।

0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: Big idea? Check. Passion? Check. लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है मगर अब नहीं Ignite अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर जोर दिया है कि वो पायदार तरक्की के हुसूल के लिए पाकिस्तान की तरक्की के सफर में अपना मौसर किरदार अदा करें। गिलगित बल्तिस्तान के नए मुंतखब वजीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान में सनअती तरक्की और इस्लाहाती अमल में खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल का क्लेदी किरदार मईशत के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया तब्दीलियां ला रहा है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: I love FM 101.

ऑलराइट वेलकम कहते हैं वंस अगेन, और टाइम जो है वो 11:22 हुआ चाहते हैं मेरी स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक। आपकी घड़ी के मुताबिक क्या टाइम है आप चेक कर लीजिए, और उसके मुताबिक आपने अपने काम करने हैं ये भी सोच लीजिए। वैसे तो सब तरफ छुट्टियां हैं, बच्चे जो हैं वो बड़े मज़े से आराम से सो रहे होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लेट उठते हैं बच्चे। रात को लेट सोना और सुबह को लेट उठना ये एक रूटीन बनती जा रही है, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पर बताया जाता है कि जी आपने रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, इसी में आपकी सेहत है और इसी में आपकी कामयाबी है। लेकिन ये सब की सब बातें जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कि फार्मूला मिल्क, इसी तरह से ये भी जो है सारी बातें वो फार्मूला मिल्क की तरह होती चली जा रही हैं, उस पर अमल कोई नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट कोई नहीं हो रहा, और जो इम्प्लीमेंट करते हैं बस वही जो है ना वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। अभी इससे पहले मैंने एक ट्रैक प्ले किया था हुए जी हुए इश्क में हम राजी, और अगर हम राजी करने की बात करते हैं तो बहुत कम लोग ऐसा होता है कि लोग हमसे राजी हो जाएं। वो इसीलिए कहते हैं ना कि अल्लाह को राजी करना आसान होता है, इंसानों को राजी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कोई एक बात अगर आपकी थोड़ी सी नागवार किसी को गुजर गई या फिर उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई तो लो बस तुम्हारा डाउनफॉल शुरू। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इस चीज़ में जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ख़ासतौर पे मैं ख़वातीन से कहूँगी कि वो जो घरों में सारे के सारे काम करती हैं, ठीक है, हमारी जितनी भी शहजादियाँ हमारी जितनी भी परियां हैं वो घरों में काम करती हैं और मतलब अपनी सारी फैमिली को देख रही हैं और आना जाना मेहमानदारी हर चीज़ देखती हैं, घर की सफाई और क्या कहते हैं कपड़े धोना बर्तन धोना खाना बनाना फ्रिज में क्या चीज़ रखी है जी उसको तरतीब से रखना है, और उसके बाद आटा गूंदना है अगर आटा नहीं है तो आटा गूंदना है, मतलब हर चीज़ को वो मैनेज कर रही होती हैं। आप ये भी देखें कि टाइम है या नहीं है, उन्होंने ऑफिस में पहुंचना है, उन्होंने कहीं पर भी जाना है, लेकिन वो इसके साथ साथ अपनी फैमिली को जो है ना वो हर चीज़ को मैनेज करती हैं, मेंटेन करके रखती हैं, और मेरे ख्याल में उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी होता है। और ये बात हम इसलिए भी बार बार करते हैं क्योंकि देखें मेल का इतना ज़्यादा काम जो है ना वो अगर हम देखें तो घर के लिहाज से इतना नहीं होता, उनको अगर ऑफिशियली वो काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनका काम नहीं है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं एक जस्ट थोड़ी सी बात आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेल जो है वो ऑफिसेज में काम किया, ठीक है, या ऑफिस का काम है वो घर में आके किया, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है कि ग्रॉसरी लेनी है तो चलें जी साथ चले गए हैं, या कहीं कोई जाना है मार्केट में जाना है तो चलें आप साथ चले गए, अदरवाइज फीमेल जो है वो ऑफिसेज को भी मैनेज करती हैं, ऑफिस के सारे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी देखनी है, पूरा एक डेकोरम होता है उसको मेंटेन करना होता है, और इसके साथ साथ जो घर की जिम्मेदारी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको भी देखना होता है। और आप बिलीव करें कि कुछ ऐसी बेचारी ख़वातीन भी होती हैं कि जो मार्केट में भी खुद ही जाती हैं, लेकर भी सौदा सेल्फ है, कोई भी चीज़ है, ग्रॉसरी है, कुछ भी है वो लेकर भी खुद ही आना है, और ऐसी सारी सिचुएशन में अगर कोई अचानक से आपके वो जिसे कहते हैं ना अचानक वाले मेहमानों का आ जाना, अगर ऐसी कोई मतवक्को हो आमद किसी की, तो उसके लिए भी हसल बसल अपने सारे काम को जो है ना वो मेंटेन करना, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने अच्छा खासा रूम का कबाड़ा किया होता है, यानी कि गंद फैलाया हुआ होता है, टॉयज़ कहीं पड़े हुए हैं, जो बुक्स हैं कॉपीज़ हैं वो कहीं पड़ी हुई हैं, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, और घर में जितने भी आप देख लेना कि जो गंद फैलाया हुआ होता है उसमें सबसे ज़्यादा गंद कपड़ों का होता है। एग्री कौन कौन करता है मेरे साथ, और इतने ज़्यादा कपड़े मतलब पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आते हैं, जब पहनना होता है तो एक सूट नहीं मिलता, वैसे हर तरफ कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने अचानक से मतलब अगर कोई आ जाता है तो बस भागम भाग सब चीज़ें उठा रहे होते हैं, औने पौने जिसे कहते हैं ना कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ी है तो आपने सेल कर दी थी तो आप औने पौने उनको फेंकने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जितना मर्ज़ी आप अपनी अपनी अलमायरा को अपनी जो वार्डरोब्स कबर्ड्स वगैरह उनको सेट करके रखें, बच्चों ने आपकी सेटिंग जो है वो बराबर कर देनी होती है। और फिर एट दी एंड ये होता है कि इतने शॉर्ट टाइम में सब चीज़ों को मैनेज करना, तो इसलिए कहा जाता है कि फीमेल्स जो है ना वो माशाल्लाह से वो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती हैं, और इसी में खूबसूरती है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह ताला ने इसी के लिए रखा है कि जो फीमेल्स यानी कि जो ख़वातीन अपने घर को मेंटेन करके रखती हैं अपनी फैमिली को मेंटेन करके रखती हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उनके लिए अजर अजीम है, इसलिए आप यहाँ के रिवार्ड्स और वहाँ के यहाँ के रिवार्ड्स मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ के रिवार्ड्स के लिए तो रेडी रहना चाहिए आपको। एनीवेज जनाब प्रोग्राम में हम शामिल करने जा रहे हैं एक और ट्रैक, और ये वाला ट्रैक जो है ना स्पेशली हमारी तरफ से सलाम है अपने तमाम उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है, उनको मालूम नहीं है कि वो क्या सुन रहे हैं, तो उनको हम बताएं कि आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 से अपनी आरजे रूबीना वजाहत को,
और हमारी तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम।

बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम आओ जी, और बिल्कुल ना घबराओ जी, क्योंकि गर्मी जो है वो अपना जोर जो है वो तकरीबन उसका ख़त्म हो रहा है। और गर्मी की अगर हम बात करते हैं तो वो जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि आजकल सिर्फ मौसमी तब्दीली का मसला नहीं है, बल्कि मौसमी तब्दीली के साथ साथ क्लाइमेट चेंज का भी जो है वो नतीजा है। क्योंकि अगर हम आलूदगी की बात करते हैं, दरख्तों की कटाई की बात करते हैं, बढ़ती हुई आबादी और शहरों में कंक्रीट का फैलाव, इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं बड़े बड़े जो सोलर प्लांट्स लगाए जाते हैं उनकी अगर बात करते, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मिलकर गर्मी को अच्छी तरह से वो जिसे कहते हैं ना कि उसको खुशामदीद कहती है और खैर मकदम करती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मौसम में तब्दीली और सख्ती नज़र आती है। बार बार कहा जाता है कि जी दरख्त लगाएं, अगर दरख्त लगाएंगे आप तो ऑक्सीजन में इजाफा होगा, ज़मीन की जो कटाई है उसका सिलसिला रुकेगा और ज़मीन में मजबूती आएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आबादी के बढ़ते हुए रुझान की, तो फिर जब आबादी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि जो कंक्रीट है वो भी ज़मीन में फैलेगा, यानी कि आपको पता है कि आबादी के बढ़ने के साथ साथ आपकी नीड्स बढ़ती हैं, आपको घरों की ज़रूरत रहती है। अब जब घरों की ज़रूरत रहती है तो फिर बहुत सारे जो जहाँ पर जंगलात होते थे, जहाँ पर बागात होते थे, वो सारी की सारी चीज़ें भी है ना कटाई के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर बिल्डिंग्स बन गई, सोसाइटीज़ बन गई। अब ये जो सोसाइटीज़ का बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी वजह से भी हमारे जो मौसम है जो कि पहले चार हुआ करते थे, अब आप देखें कि कितना मतलब चेंज हो गया है कि पहले चार मौसम थे, गर्मी थी, सर्दी थी, बहार थी, खजा थी, लेकिन अब क्या है कि अब सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि दो मौसम हैं और कुछ अर्से तक जो है ना वो आपको दो मौसम भी डेढ़ मौसम में नज़र आएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी सर्दी होगी और फिर ढेर सारी गर्मी होगी। ये सारी की सारी जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे सोलर प्लांट्स की बात की है, तो प्लेट्स की बात की है, तो इर्द गिर्द की ज़मीन से सूरज की रोशनी को जज्ब करते हैं, ताहम बढ़ती हुई जो गर्मी है उसको अगर करें कम, तो फिर उसमें ग्रीन हाउस का जो है ना उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। पौधों को लगाएं आप, कहा जाता है कि जी दरख्त लगाएं ज़मीन में, हुक्म है ये दीन में, और दरख्त लगाना जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी साबित है इसकी अहमियत, और इसको आप रद्द नहीं कर सकते। बच्चों को मैंने देखा है कि छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो क्या करते हैं कि उनके अंदर ख्वाहिश होती है कि जी हम प्लांट्स लगाते हैं और क्या कहते हैं जब ये प्लांट्स बड़े होंगे तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होंगे। बच्चों को बाकायदा इस चीज़ की तरबियत भी दी जाती है और स्कूल्स में इस तरह के इवेंट्स होते हैं। अब मैंने देखा है कि इवेंट्स इस तरह के ऑर्गेनाइज़ करवाए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर कुछ इस तरह के जैसे इवेंट्स, जैसे कि ये मैंगो फेस्टिवल है ये आ रहा था, और इसी के साथ साथ और मैंने कुछ ऐसे फेस्टिवल्स मेरी नज़र से गुजरे थे, अभी नाम मैं सबका तो मुझे नहीं याद रहा, लेकिन एक मैंगो फेस्टिवल मुझे याद रह गया कि वहाँ पर भी बच्चों को बाकायदा प्लांटेशन के बारे में बताया गया और बच्चों ने बहुत सारे प्लांट्स लगाए भी हैं। सोशल मीडिया में मैंने देखा कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स लगाए, कुछ ने लगाए हुए थे और उन्होंने बताया कि जी 4 साल पहले लगाए थे, 5 साल पहले लगाए थे, और अब जी ये बड़े बन गए हैं, मतलब बड़े दरख्त बन चुके हैं और इन पे फल और फ्रूट्स आ चुके हैं, फूल आ चुके हैं। सो ये फल फ्रूट जो है ना ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद हैं और जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी, इनके ये रिस्क का एक वसीला है, अगर आप इन चीज़ों को लेकर चलें तो बहुत सारा फ़ायदा है। बहुत सारे जो परिंदे हैं उनका मस्कन है ये दरख्त, आपके लिए ढेर सारी ऑक्सीजन और बिल्कुल प्योरीफाई जो हवा है उसका मस्कन है। आप इन तमाम चीज़ों को अगर फ़ायदों को सोचेंगे तो फिर आप ज़रूर इस चीज़ की तरफ झुकाव करेंगे अपना। सबसे बड़ी बात यह कि माहौल के अंदर जो एक खुशगवार तब्दीली आएगी, बेशक के आबादी बढ़ रही है, रुझान बढ़ रहा है सोसाइटीज़ का, लेकिन अगर आप अपने घरों को और अपने जो आपकी गलियां हैं, कूचे हैं, आपके सहन हैं, अगर आप उनको सरसब्ज रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। कहते हैं ना कि एक एक ड्रॉप जब गिरता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है वो एक क्या कहते हैं समंदर बन जाता है, ठीक है, एक एक कतरे से समंदर बनता है, ख़ासतौर पे ये बात कही जाती है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा अगर इसमें मेहनत करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा समंदर बन सकता है, यानी कि बेहतरी आ सकती है। एनीवेज प्रोग्राम में अपडेट हो चुकी है हमारी पोस्ट, आप जा सकते हैं वहाँ पर अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं, प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप किस तरह का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, मौसीकी कैसी सुनना चाहते हैं आप बता सकते हैं। शामिल करने जा रही हूँ एक और ट्रैक, 11:36 हो जाते हैं, वापस पलट कर आते हैं, स्टे ट्यून FM 101।

राइट, आपकी ऑफ एयर कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी इकरा मेरे साथ लाइन पर थी और बहुत कम आवाज़ आ रही थी। इकरा आपकी बहुत मुश्किल से मैंने उनका नाम जो है वो गेस किया और आवाज़ इतनी कम थी। चकवाल से हमारे साथ आप शामिल हुई, थैंक यू सो मच। और कह रही थी कि चकवाल का जो मौसम है अबर आलूद है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ठंडी हवाएं आई नहीं है, मैंने यहाँ से तो भेज दी हैं, पार्सल कर दी हैं, बस पहुँचने वाली होंगी। तो वो कहने लगी कि जी मैंने रिसीव कर ली हैं, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ चबूर जी से फरी साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई और इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी कि मैं उनकी एक्साइटमेंट को जो है वो फील कर रही थी और मैं भी बाकायदा वैसे ही एक्साइटमेंट के साथ जवाब दे रही थी और कह रही कि मुझे अच्छा लगा इतने अरसे के बाद आप आई हैं। कहती मौसमी बुखार था, मैंने कहा नहीं मुझे मौसमी बुखार नहीं था बल्कि मौसम को मैं हुई हुई थी। हो जाता है ना ऐसे जब ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम करती हैं और कुछ मेरी जैसी जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं तो फिर बस थोड़ा सारा आराम करने के लिए जब बहाना नहीं कोई मिलता ना तो बीमार हो जाती हैं। अरे मजाक कर रही हूँ। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ानदान, तालीम, सेहत, कारोबार, सियासत, मीडिया और खेल समेत ज़िंदगी के हर शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं और आप सब भी इस चीज़ का हिस्सा हैं। अगरचे इससे भी ज़्यादा अगर कुछ हम समाजी चैलेंजेस की बात करते हैं तो बहुत सारे समाजी चैलेंजेस भी उनको जो है वो फेस करने पड़ते हैं हर रोज़ ऑफिस में, रास्ते में, घर में। इवन के घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं कि उनके सामने भी चैलेंज आपको जो है वो दरपेश रहते हैं। और ये इस सारी के सारे मसले मसाइल क्यों हैं, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं और बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि सब ने अपने अपने जो है वो अंदाज़े लगा रखे हैं। बहुत सारे अंदाज़े ठीक भी होते हैं, बहुत सारे अंदाज़े जो हैं वो गलत भी साबित हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि बस इन्हीं अंदाज़ों के साथ जो है ना वो आपने चलाना होता है अपने आप को और लेकर चलना होता है। ठीक इसलिए हो जाते हैं कि कहा जाता है कि जी अगर आप थोड़ा सा गैप रखते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है। कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ मिलना जो है ना वो कदर खो देता है, लेकिन वहीं पर जहाँ पर कहते हैं कि रोज़ रोज़ मिलने से कदर खो जाती है वहाँ पर ऐसा भी होता है कि जब आप थोड़ा सा जो है ना वो करीब आते हैं तो फिर कभी कभी बहुत सारे मसले मसाइल ठीक हो जाते हैं क्योंकि आपके दरमियान में जो वो खदशात होते हैं, वो जो गिले शिकवे होते हैं, वो जो नाराज़गियाँ और गलत फहमियाँ होती हैं ना वो भी दूर होने लगती हैं। अब बंदा क्या करे, इसीलिए कहा जाता है ना कि अंदाज़ों के मुताबिक जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। अंदाज़े के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, ज़िंदगी में बहुत सारे अंदाज़े हो सकते हैं। कभी किसी के तजुर्बे से आप ये नहीं सोचते कि उसने ये तजुर्बा किया था तो मेरे लिए भी ये ठीक होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी मेडिसिन से किसी को आराम आ गया और फिर वो ये सोचते कि इसी मेडिसिन से किसी दूसरे को भी आराम आ सकता है। ये जो हो सकता का लफ्ज़ होता है ना, ये हो सकता ही रहता है। इसको हम यकीन में तभी बदलते हैं जब वो आपके साथ आपकी बॉडी पर उसका जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और उसके मुताबिक एडजस्ट कर जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, हमें भी इसी से अफाका हुआ है। मतलब ये कि अपने अपने

एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने अपने तजुर्बात से ज़िंदगी को जो है वो समझना, सीखना और लेकर चलना ज़रूरी होता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अपने अपने मिजाज होते हैं और हर तरह के मिजाज के जो लोग होते हैं ना, आप उनके मुताबिक अपने मिजाज को नहीं बदलते। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जी आप सिर्फ ये कह देते हैं, अच्छा कहीं पर आपको नज़र आता है ना कि किसी से इख्तलाफ है, या आप समझते हैं कि मैंने जो बात कही है वो इनकी उस बात से मुत्तफिक नहीं है वो लोग इस बात से जो आपने कही है, तो वहाँ पर सिंपल खामोशी इख्तियार कर लिया करें, छोटी स्माइल दिया करें और साइड हो जाया करें। बेहतरीन दवाई। ऑलराइट, बहुत सारी दवाइयाँ आप चलती रहेंगी और एक दवाई जो है वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ, वो क्या है हम बात करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम ख़वातीन का है और हम लेडीज़ लाउंज में बात करते हैं लेडीज़ के हवाले से, और लेडीज़ को बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं, वहाँ पर उनके हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि अपने आप को इग्नोर कर देना इनकी पहली तरजीह होती है, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं, इसी तरह से अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हमारी सेहत जो है वो बड़ी तेज़ी से डाउन हो रही होती है, बहुत सारी फीमेल्स हैं नींद नहीं पूरी हो पाती तो डार्क सर्कल्स बन रहे होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि उनके फेस पे जो है वो पैचेस आने लग जाते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस नहीं है, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और इतना टाइम नहीं है कि कोई जाके स्किन केयर जो है वो ट्रीटमेंट लिया जा सके, ना ही पॉकेट इस चीज़ की इजाज़त देती है, और ना ही इतना टाइम होता है कि हर्बल तरीक़ेकार इख्तियार किए जाएँ। तो फिर क्या है कि आप सिर्फ एक काम करें, अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है, ठीक है, आपने वो लेनी है, अगर आपको पंसार की दुकान से मिल जाए साबत अश्वगंधा, लकड़ियों की तरह ये होती है, आपने वो लेनी है साफ़ सुथरी और उसको अपने सामने पिसवा लें, और उसमें थोड़ी सी जो मीठी सौंफ होती है ना, कच्ची वाली सौंफ जिसको चाय में भी डालते हैं, वो आप थोड़ी सी ऐड कर लें, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे अगर आपने 100 ग्राम इनके 100 ग्राम आपने अगर अश्वगंधा लिया तो उसमें आप तकरीबन कोई 25 ग्राम इनके 25 ग्राम के करीब जो है वो सौंफ डाल लें, और उसको पाउडर की फॉर्म में बना के अपने घर में रख लें, और रोज़ सुबह के टाइम पे आप उसको पानी के साथ जो है उसका इंटेक करें, आप बिलीव करें अमेजिंग इसके जो है वो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो मैं ऐसे ही आके आपके साथ नहीं शेयर कर देती कि मैंने कहीं पर देखी और मैंने आगे आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दी, ऐसा नहीं है, शुरू से ही मेरी आदत है, मैं ऐसा नहीं करती, बल्कि जिनके बाकायदा मैंने ट्रीटमेंट्स देखे हैं और उनको उससे फ़ायदा होते देखा है मुख्तलिफ लोगों को, ये नहीं कि दो चार लोगों का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, कि ऐसा नहीं है, दो चार लोगों की एक्सपीरियंस की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस इकट्ठा करती हूँ, वो वाला सारा डाटा इकट्ठा करती हूँ, फिर मैं आपके साथ आके शेयर करती हूँ। सो ये है कि आप इसको करने के बाद मेरे फैन हो जाएंगे। 11:47 हुआ चाहते हैं उन लोगों के लिए कि जिनको समझ नहीं आती, 11:47 ऑन द राइट डायल। सुनिए इस ट्रैक को, वापिस पलट कर आते हैं, स्टे ट्यून्ड एफएम 101। मुझे कहते हैं रुबीना वजाहत, आपको क्या कहते हैं मुझे आके जरूर बताइएगा।

ऑलराइट, अमारा बेग हमारे साथ ही, और अमारा बेग बहुत शुक्रिया आपका, इतनी तारीफों के पुल बांधते हैं ना जो इतनी मोहब्बत से, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है और हम भी आपको दिल से याद करते हैं। एक बात तो तय है, कहते हैं कि आप जब किसी के लिए अच्छा गुमान रखते हैं ना, तो उस शख्स के लिए अगर उसके दिल में अगर आपके लिए कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसी बात है, तो वो भी फिर अच्छे गुमान में बदल जाती है। और ऐसा जो है वो हमारे दीन के हवाले से है, और मैं कभी भी कोई भी बात जो है ना वो इस तरह से नहीं करती हूँ कि जिसको मैंने किसी क्या कहते हैं इंग्लिश किस्म के लोगों से जो है वो सुना और इसी तरीके से कर लिया। हमें हमारी हर बात की जो रूट है ना वो हमारे असल से ज़रूर जुड़नी चाहिए और हमें उसी के मुताबिक बात करनी चाहिए। सो अगर आप गुमान किसी के लिए रखते हैं ना जैसा, तो उसका गुमान भी आपके लिए वैसा ही होने लगता है। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने ढेर सारा सलाम जो है वो फरी आपी के लिए भी भेजा है अपनी तरफ से, और मतलब डेफिनेटली हमारी तरफ से भी होता है। फरी साहिबा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और बहुत सारे दूसरे लिसनर्स हैं, बहुत सारे नाम आपने लिए, थैंक यू सो मच। अभी हम मैसेजेस की तरफ ज़रा एक नज़र दौड़ा लें, क्या ख्याल है? तो हमने पेंडोरा बॉक्स ओपन किए तो हमें बहुत सारे मैसेजेस नज़र आए हैं। क्या नाम है जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग शो, थैंक यू सो मच। कमल नवाज आई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच कमल आपका भी। अकबर खान आ चुके हैं कराची से, कराची का मौसम कैसा है? समंदर जो है वो अभी भी थोड़ा गर्म है या थोड़ा ठंडा हो गया? वो जो गर्मी की वजह से उसका गुस्सा था वो थोड़ा ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? और दिन बखैर कहते हैं, हम भी आपको दिन बखैर कहते हैं। और खुर्शीद हमारे साथ आ चुके हैं, खुर्शीद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुर्शीद आप ठीक हैं? रियाज भट्टी आ चुके हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, दी बेस्ट, आपका भी शुक्रिया। कमल नाज कैसी हैं? बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया आपका इतने सारे मैसेजेस के लिए, लवली मैसेजेस के लिए। और कहते हैं हम भी आ गए हैं आपके शो में हाजिरी लगवाने के लिए। अच्छा, वैसे हाजिरी लगवाना और चीज़ होती है, और उसमें अटेंशन के साथ जो है वो पूरा परफॉर्म करना, यानी कि अब जैसे कहते हैं टिल टू बॉटम, साथ रहना, शुरू से लेके एंड तक साथ रहना, वो एक और बात होती है। साथ देना, साथ निभाना और बात होती है, साथ चलना और बात होती है। अब देख लें आप लोग क्या करते हैं। अच्छा जी, एक और हमारे साथ नाम जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, एक और हमारे साथ लिसनर शामिल हुए हैं, क्या नाम है इनका? जलेहार थर पार्कर से वफा हरेश कुमार कितवानी, ये सारे नाम मुझे थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। अच्छा, ऐसा करती हूँ कि मैं ये वाले नाम सारे रिपीट करूँगी और उसके बाद फिर जो है ना वो आपके साथ यहाँ पे अनाउंस करूँगी। कहते हैं ना कि जब एक चीज़ आप अपनी नज़रों से और अपने अल्फाज से गुजार लेते हैं ना, फिर आसान हो जाती है आपके लिए। अब्दुलरहमान ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुलरहमान तहसील मैलसी, मैं रज़ा भाई स्पेशल सलाम पेश करता हूँ और इनके वालिद साहब के लिए दुआ है, अल्लाह पाक की सेहत और शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। रज़ा भाई की फैमिली के लिए और सबके लिए बहुत सारी सलामती की दुआ। अली फरमान अली आ चुके हैं गुड मॉर्निंग कहते हुए, शुक्र करें मैंने मैसेज अभी पढ़ लिया, अगर मैं 12 बजे के बाद पढ़ती तो फिर गुड मॉर्निंग नहीं, मैंने फिर गुड आफ्टरनून डायरेक्ट कहना था। रज़ा भाई आ चुके हैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक वो जो आपके आने से हवा चलती है ना वो चली नहीं है रज़ा भाई, लगता है आप मसरूफ़ हैं। शमसी लिसनर रेडियो क्लब की तरफ से बहुत सारी सलाम, और इसके साथ हमदुल्ला मलाखेल आ चुके हैं, आलिम की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। मौलम और तालुम दोनों का रिश्ता है और साथ साथ चलता है, मौलम भी तब तक है जब तक तालुम है, यानी कि इल्म देने वाला तभी तक है जब तक इल्म हासिल करने वाला है, तो इसीलिए दोनों का बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। और अगर हम बात करते हैं आलिम की और जाहिल की, तो इनका भी ताल्लुक इस तरह से बनता है, क्योंकि कहते हैं आलिम वो होता है कि जिसके बारे में जो इल्म वो होता है कि जो हम नहीं जानते, जो हम जान लेते हैं वो फिर इल्म नहीं रहता। मलिक वसीम इकबाल आ चुके हैं सलाम कहते हैं, अकबर खान, और अच्छा कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि वो रिपीट में आ रहे होते हैं, कोई नई बात करें, कोई डिफरेंट बात करें कि मुझे भी सुनने का पढ़ने का मज़ा आए। खुर्शीद शहजाद कहते हैं कि कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हम सही इस्तेमाल कर सकें। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो अल्फाज भी होते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से उनको डिलीवर भी कर देते हैं,
लेकिन सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू फिर भी डिफरेंट ही रहता है, क्योंकि उसकी उसका जो नुक्ता नजर होता है ना वही मुख्तलिफ होता है। आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन किसी का नुक्ता नजर नहीं बदल सकते, क्योंकि ये वो नुक्ता है जिसको आपने खुद बदलना है।

0: ऑलराइट वेलकम कहते हैं वंस अगेन, और हर बार वेलकम करना जो है वो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना कि जब आप कभी कहीं जाते हैं और आपको वेलकम करने वाले मौजूद हों तो आपकी सफ़र की जो थकन होती है वो ख़त्म हो जाती है, और वो जो खुशी होती है ना कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आपको वेलकम करने वाले मौजूद हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप कभी किसी नॉर्दर्न एरिया का सफ़र करना चाहें, इरादा बनाएं और उसके बाद आपको ये बताओ कि वहाँ पर आपको वेलकम करने वाले नहीं है, आपको कोई होटल लेना है, कोई किसी कॉटेज का अरेंज करना है, या किसी ऐसे अपने किसी फ्रेंड को कहना है कि जी काइंडली हमारे लिए कुछ अरेंज किया जाए, और फिर ये भी आपको यकीन हो कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो यकीन करें कि आपको सफ़र से ज़्यादा मतलब वो जो एक्साइटमेंट होती है उससे ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन सताती है कि आप जो जा रहे हैं आप स्टे कहाँ करेंगे, आप रुकेंगे कहाँ, इसलिए वेलकम करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अपने रिश्तों में अगर कोई ऐसे हैं तो आप उनको वेलकम किया करें, अगर वो इस चीज़ का गुमान रखते हैं आपके लिए और इस चीज़ की ख्वाहिश भी रखते हैं कि आप उनको वेलकम करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम कभी कभी दूसरों को वेलकम करते हैं तो कोई ऐसा लम्हा ज़रूर आता है, उनके दिल में भी अच्छाई पैदा हो जाती है कि वो भी किसी दिन आपको वेलकम कर सकते हैं। जलियार थर पार्कर से, देखिए अब मैंने नाम उसको रीड किया इसलिए मैं आपके साथ फिर इसको अनाउंस कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, थोड़ा सा सब्र रखा आपने, थोड़ा सा पेशेंस रखे। जलियार थर पार्कर से वफा, हरीश कुमार, किटियाटी, मोनिका पारस और इसके साथ साथ अनिशा कुमारी, जबरदस्त प्रोग्राम है, थैंक यू सो मच। ये तीन नाम थे, मैंने इनको दो बार तीन बार रीड किया, थोड़ा सा हट के थे ना, तो फिर मैंने कहा क्या अब इनको अनाउंस किया जाए। अच्छा वैसे अगर हम बात करते हैं ना नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो एहतियात के साथ जाइएगा, क्योंकि जब मौसम लैंडस्लाइडिंग का होता है तो फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, फिर तो बड़ी बेवकूफ़ी है कि इंसान फिर से प्रोग्राम बना ले और फिर बड़े मसले मसाइल और ख़तरात का जो है ना वो सामना करे। ये बात नहीं होती कि हम हिम्मत वाले हैं, हमें रास्ते मालूम है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, कहते हैं कि आप सबसे पहले अपना मुहासबा करें फिर अल्लाह पर तवक्कल करें, यानी कि सबसे पहले आप देखें कि वो जो कहते हैं ना हुज्जत तमाम की, आप हुज्जत तमाम करें पहले अपने तौर पर सारी चीज़ों को करें और उसके बाद फिर आप अपना जो रखते सफ़र है उसको बांधें। हम लोग जो है जनाब गए थे, मुझे याद है तकरीबन कोई साल डेढ़ दो साल पहले की बात है कि मुझे इत्तफाक हुआ, मैं इस्लामाबाद में आपको पता है गई थी, शायद एक साल पहले की बात है, और वो इतना ज़बरदस्त हमारा ट्रैवल था, इतना ज़बरदस्त हमारा ट्रिप था, फैमिली ट्रिप था, और मैं तो आपको पता है कि मेरी माशाल्लाह से सारी फैमिली ऑलमोस्ट मेरे ददियाल सारे और इवन कि मेरी छोटी सिस्टर जो है वो भी इस्लामाबाद में रहती हैं, तो इसलिए जगह का कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है माशाल्लाह से। हरनोई जाने का मुझे इत्तफाक हुआ उनके साथ, वही मुझे लेकर गई, क्योंकि वो जब भी छुट्टी होती है ना तो वो कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, और मुझे लगता था कि लाहौर में शायद पॉइंट्स ज़्यादा हैं, मुझे पता चला कि लाहौर में सारे आर्टिफिशियल पॉइंट्स हैं। अब ये नहीं कि मैं लाहौर की कोई ऐसी बात कर रही हूँ, नहीं मतलब एक जेन्युइन बात कर रही हूँ ना, लेकिन मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वाली साइड पर जाएं तो आपको सारे के सारे ओरिजिनल यानी कि जो जिसे कहते हैं ना नेचुरल कुदरती मनाजिर नज़र आते हैं। मनाजिर से याद आया, मुझे मनाजिर नहीं आए, मनाजिर आप भी आ जाएं, आदिल मलिक आप भी आ जाएं, और इसके साथ साथ कोई से हमारे साथ आते होते हैं क्या कहते हैं हमारे बहुत प्यारे से रिस्पेक्टेड भाई, आप भी आ जाएं। एनीवेज बहुत ज़बरदस्त थे वहाँ पे मनाजिर थे, और मुझे इतना मज़ा आया, यकीन करें कि वो जो एक ट्रिप था उसने मुझे पूरे एक साल की एनर्जी दी, इसीलिए कहा जाता है कि ज़मीन पर चलो फिरो घूमो अपने लिए फजल और रिस्क तलाश करो, इनके रिस्क तो ये हो गया ना कि जब आप अपने ही ज़मीन पर चलते फिरते हैं तो आपकी बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, सम टाइम ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे होते हैं उस काम में वो फ़ायदा दे जाते हैं आपको, वो उसके मास्टर होते हैं, हर फन बोला होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर करते हैं उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इस तरह एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ भी जो है वो आपको बहुत आगे ले जाता है, और ये भी होता है कि अपना और रब का फजल तलाश करो, कि इनके अल्लाह ताला का फजल जगह जगह है, आपके लिए रिस्क का रोज़ी का जो है वो वसीला बन सकता है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप बहुत सारी जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं उनसे बाहर निकल आते हैं। ये जो तोते की तरह मेरी ज़ुबान चल रही है ना यहाँ पर, जो मैं पैरट रीडिंग करती जा रही हूँ, ठीक है ना, ये भी इसी वजह से है क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है ना मैंने भी खुद को अपनी उस चीज़ से जो है वो मैंने खुद को जो है ना वो साइड पर किया, ठीक है ना। हम जब अपनी रूटीन में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपनी असल जो हमारी अपनी हेल्थ होती है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बस फिर उसको इग्नोर करने के बाद क्या होता है कि फिर आप इस काबिल भी नहीं रहते कि लोग आपको इंपॉर्टेंस दें, इनके आप बिल्कुल टोटली सीन से गायब हो जाते हैं, सीन में रहने के लिए और जहन में रहने के लिए, दिलों में रहने के लिए, सोचों में रहने के लिए थोड़ा थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम दिया करें। और अपने ऊपर टाइम देने का मतलब ये कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं आप। ये ज़िंदगी बड़ी ही कीमती है लिसनर्स, और एक बार मिलती है तो फिर इसके बाद दोबारा हमें वापस दोबारा वापसी का चांस नहीं होगा। ये नहीं होगा कि एक बार मिली है तो ठीक है, इसको हम दूसरी दफ़ा में अपने तजुर्बे से हम अच्छे तरीके से गुजारेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो दिन गुजर गया, ये जो लम्हा गुजर गया, ये वापस पलट कर नहीं आने वाला। और वो जो हमारे दो मुहाफिज हैं ना, जो अल्लाह ताला ने मुकर्रब फरिश्ते हमारे लिए लिखे हैं, यानी कि किरामन कातिबीन, उन्होंने जो लिखना है वो लिख लिया है। और देखें कितनी बड़ी बात है कि अगर वो आपने कुछ ऐसी बात कह दी है, कुछ नेगेटिविटी है जो लिखा गया है उसमें, बस लिखा गया, लेकिन अगर आप कुछ अच्छे काम करते हैं तो देखें वो रेज भी हो जाता है। कितनी ज़्यादा हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो है ना वो जिसे कहते हैं छूट दे रखी है, और फिर भी इंसान जो है वो नाशुक्र रहता है। कहते हैं कि हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और ज़मीन पर चलो फिरो, रिस्क तलाश करो, घूमो फिरो, और देखो कि अल्लाह ताला की तख्लीकात कितनी खूबसूरत हैं। बहुत सारे परिंदे ऐसे होंगे कि जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे फल फूल ऐसे होंगे जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे, और बहुत सारे जायके ऐसे होंगे जो अभी तक आपने नहीं चखे होंगे। और बहुत सारे ऐसे काम भी होंगे जो अभी तक आपने नहीं किए होंगे। वो काम ये है कि आप डायल कर सकते हैं 042 कोड लगाकर 111-000-101, राबिते का नंबर है, आप डायल कर सकते हैं, ऑन एयर आ सकते हैं। और आपने आज मुझे बताना क्या है, आपने मुझे ये बताना है कि अगर कोई स्किल सीखने का आपको मौका मिले, अगर कोई चांस मिले आपको किसी स्किल को सीखने का, किसी काम को, किसी हुनर को, किसी महारत को सीखने का, तो आप क्या सीखेंगे। सो 1 2 3 करने वाले हैं, और 12 बजे के बाद लाइव कॉल्स का सिलसिला था। तो सो 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैं फरीद बुजुर्ग और से बात कर रही हूँ।
0: जी मैंने पहचान लिया आपको, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं?
1: मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आपके आने की बहुत खुशी हुई है।
0: मुझे भी आपके आने की बड़ी खुशी हुई, आपको भी वेलकम कहते हैं।
1: मैं लाहौर में थी।
0: अच्छा अच्छा, मुझे पता है लाहौर में, मैं प्रोग्राम में आने की बात कर रही हूँ जनाब।
1: अच्छा अच्छा, वो ना टॉपिक में बात करते हैं।
0: जी जी,
1: आपने कहा कि स्किल्स के बारे में बात करें, तो घरेलू खवातीन जो है वो सबसे पहले तो सिलाई सीखेंगी, कुकिंग सीखेंगी। खाना अच्छा पकाना आता होगा तो घर की ना सारी सिलसिला सही चलेगा।
0: हाँ मतलब रोटियाँ सारी पका लेंगी घर की,
1: वो तो पकानी पड़ेगी, अगर टेढ़ी होगी तो बंदा नहीं खाएगा तो कहाँ जाएंगे।
0: ठीक हो गया जी, ठीक हो गया।
1: तो बच्चों को भी सिखाना चाहिए, जिनकी शादियाँ करनी है इन बच्चियों के लिए ये लाजमी है कि पहले सबसे पहले कुकिंग सीखे।
0: अच्छा ठीक हो गया,
1: सिलाई सीखे।
0: ठीक है,
1: घरदारी सीखी होगी तो आगे वाला घर सही चलेगा।
0: घरदारी सीखी होगी, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: दूसरे नंबर पे शमसी ग्रुप वाले रजा भाई है ना, उनके अबू बीमार है, उनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे।
0: आमीन
1: आमीन। जल्दी बाकी सब लिस्टर के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, तो एहसन खां है, छोटा तारिक है, कुवैत वाले तारिक है, तो बड़े तारिक है, तो ये शिजारियाँ जो है रिंचा है, हमारा बेग है, लेखा शिजारी है, आयशा शिजारी है, मारिया शिजारी है, शमीमा भी जल्दी जल्दी आ गए कॉल पे।
0: हाँ जी, ए टू जी सारी, ए टू जी पूरी ABC, ठीक है ना।
1: आसमान मुगल है, वो सोए हुए हैं, इनके मुंह पे ना पानी का चट्टा डाले, लोहरा ये आयो काल जो से।
0: ठीक है ठीक है,
1: अल्लाह हाफिज जी, मान लो।
0: ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। राइट, फरी साहब हमारे साथ चोपुर जी लाहौर से शामिल हुई हैं। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है, और आपने मुझे बताना यह है कि अगर आपको कोई स्किल सीखने का मौका मिले, अगर आपको कोई महारत सीखने का मौका मिले या माहिर होने का मौका मिले, तो आप क्या सीखेंगी। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो।
0: जी जी,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: वेरी नाइस सरप्राइज।
0: मुझे भी सरप्राइज ही मिला जब आपने एकदम से वो इतनी ब्यूटीफुल सी आवाज़, इतनी कोयल जैसी आवाज के साथ जो है ना वो आवाज किया।
2: मैं गाना गुन रहा था, बीच में बीप चली, वो पता नहीं चला कि कॉल पिक कब हुई है।
0: बस हो गई ना, और हमने थोड़ा सा सुन भी लिया, सबने सुन लिया, फिर तो अब आपको गुनगुनाना भी पड़ेगा। पहले आप मुझे सवाल का जवाब दें, उसके बाद फिर आपने जान छुड़वानी है तो फिर थोड़ा सा गुनगुनाना पड़ेगा।
2: मैं कहना चाहता हूँ कि स्किल का तो मैं बाद में बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा एक लॉन्ग टाइम के बाद आपकी आवाज सुन के
0: बहुत शुक्रिया
2: और
0: आपका।
2: मैंने कोई हाफ एन आवर पहले ही जो है ना मैंने सुनना स्टार्ट किया है। और रही बात स्किल की
0: जी,
2: तो छोड़ दिया था मैंने जो मैं स्किल सीख रहा था फ्लूट बेसिकली जो सीख रहा था वो मैंने छोड़ दिया था बेसिकली जब हमारा घर सेल हुआ था तो फिर दो तीन जगह हमने चेंज किए फ्रेंड से आए
0: okay.
2: उस वजह से मैं सोफिया कुछ इस तरह की नहीं कि मैं नहीं कर सका बट नेक्स्ट मंथ से आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
0: जरूर जरूर आपके लिए दुआ है कि आपको कामयाबी मिले जरूर।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आप थोड़ा सा गुनगुनाइए।
2: नया गाना ही आया बस वो मैंने ये तीन चार लाइनें सुन वो जो है ना मेरी जबान पे इस टाइम है वो मैं आपको सुना देता हूँ।

0: खुद को सताऊं वो रस पे सजाऊं तू जिन पे चला। बस इतना ही अभी आया।
1: बहुत जबरदस्त, कमाल, सीरियसली बहुत अच्छी आवाज है,
0: सुर
1: और लय बहुत अच्छी है।
0: थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह आते रहें और हमें महसूस करते रहें अपनी आवाज।
1: जरूर जरूर,
0: बहुत शुक्रिया।
1: ओके जी, ओके, अल्लाह
0: हाफिज़।
1: ऑलराइट जनाब, हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे लिसनर फराज थे, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी ज़बरदस्त सी आवाज़ आज आपकी सुन ली है, इसका मतलब अचानक अचानक जो है ना कॉल कभी अटेंड कर लेनी चाहिए। 12:16 हुआ चाहते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।

0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
0: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ
1: ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਲਦ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨੀਲਾ ਆਪੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਸਰੀ ਆਪੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਿਮਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਜਦਾ ਭੈਣ ਹੈ
0: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਮ ਟਾਈਮ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭੀ ਆਏਗੇ ਨਾ
1: ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ
0: जी अब देखते हैं कौन है लाइन पर अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो वालेकुम सलाम
0: शमी वापी आ चुकी हैं झंडे लगा चुकी हैं जी जी कैसी हैं आप
2: अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ मैंने कहा फरी याद कर रही थी तो मैं क्यों ना शामिल हूँ
0: सभी याद करते हैं जनाब ऐसी बात नहीं है
2: बहुत अच्छा शो हमेशा ही करता बहुत अच्छा शो तो मुझे अगर कुछ हो कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो मैं तो सिलाई ज़रूर सीखूंगी इसलिए
0: अच्छा,
2: कि सिलाई यकीन करो कि उतने का कपड़ा होता है सूट और उतनी आजकल सिलाई सीने वाले ले रहे हैं
0: और वो भी नखरों से
2: नखरों से हाँ जी बिल्कुल तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना इंसान घर में सीखे और घर में खुद ही सी ले
0: बिल्कुल ऐसे ही है
2: हाँ तो मैं तो सिलाई सीखूँगी ज़रूर
0: ज़बरदस्त यानी कि आप सिलाई स्टिचिंग सीखना चाहती हैं ठीक हो गया मतलब आती नहीं है थोड़ी बहुत आती है या नहीं
2: नहीं नहीं नहीं आती
0: अच्छा अच्छा जी पहली बार सच सच सच बोल रहे हैं ना वरना कहते हैं हाँ हम तो सी लेते हैं
2: नहीं बस झूठ इंसान क्यों बोले नहीं आती मुझे नहीं आती अब कोशिश करूँगी सीखने की तो बाकी तारिक भाई कोई वाले सुन रहे हैं वो ये उन्हें आके बताएं वो मैसेज करते हैं कि वो चले गए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में ही है
0: अच्छा ठीक है ठीक है
2: बाकी सब सुनने वालों को मिलते थे बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम फरी आई थी अनिला आ जाए रुबीना जट्टी आ जाए ये लोग बड़ा मजा आता है रौनक लग जाती सारे आ जाए
0: बस ठीक है बस रौनक लगने वाली है अब ठीक है
2: और गाना आप कौन था गए गाना गुनगुना दे अगर सदा बहार कोई सा भी प्ले
0: ठीक हो गया मैं आपके लिए प्ले कर दूंगी ठीक है
2: ठीक है
0: बहुत शुक्रिया आपका शिमला ओके ओके अल्लाह
2: हाफिज़
0: इचरा से शमी वापी हमारे साथ थीं और सब सुनने वालों को सलाम भी कह रही हैं अच्छा वैसे कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती आप कभी भी किसी भी उम्र में सीख सकते हैं किसी भी एज में सीख सकते हैं पाबंदी नहीं हाँ दिल होना चाहिए और क्या कहते हैं कि जज्बा होना चाहिए सीखने का अच्छा वैसे स्टिचिंग मुझे भी इतनी कोई ख़ास नहीं आती मेरी मदर जो है ना वो माशाल्लाह हर तरह की स्टिचिंग कर लेती हैं और सिलाई कढ़ाई और पता नहीं मकराने और पता नहीं क्या क्या मैंने जो है ना वो बताती हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें बनाई और बनाई भी हैं यानी कि अभी भी कुछ उनके बनाए हुए हाथ के नमूने जो है ना वो मौजूद हैं कभी कहीं नज़र आ रहे होते हैं और माशाल्लाह मैं जिसे कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा तो मैं उसके बरक्स मुझे इतनी ज़्यादा स्टिचिंग नहीं आती थी और मैंने अब क्या किया कि फातिमा के लिए मैंने कुछ जो ड्रेसेस हैं वो मैंने स्टिच किया और वो भी किधर से देखे यूट्यूब से देखे मैंने देखा अच्छा पुरानी चीज़ों को किस तरीके से स्टिच करके दोबारा से नई चीज़ें बना रही और मैंने फिर अपने हस्बैंड की जो पुरानी शर्ट थी ना वो कहते थे ये मेरे जैसे इसके कपड़े हैं मैंने कहा नहीं ये मैंने कहा ये आप ही के कपड़े हैं तो इस तरह से मैंने दो तीन जो शर्ट्स हैं ना उनको मतलब पहले तो शुरू में थोड़ी सी ख़राब हुई लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्कर्ट्स टाइप जो ड्रेसेस थे ना वो बनते गए अब वो बड़ी होगी अब उस तरह के बनते नहीं हैं मैंने लेकिन यूट्यूब से देखकर इस बार जो है ना वो ईद का जो एक ड्रेस था वो मैंने ऐसे ही मैंने कहा चलो बनाती हूँ वैसे तो मैंने बाय किए थे लेकिन मैंने एक ड्रेस बनाया भी था लेकिन यकीन करें हमें एक इवेंट पर जाना पड़ा और फातिमा वजीद थी कि मैंने वही वाला ड्रेस पहनना है जो मैंने बनाया था बकायदा उसके साथ पाउच बनाया था और आरिफ सदीकी का नाम आपने सुना होगा कौन जानता नहीं है उनको तो उन्होंने इनवाइट किया था फैमिली के साथ सो हम जब गए हैं तो उनकी जो मिसेज हैं और उनकी जो बेटियां आप बिलीव करें कि वो कह रही थी आपने कौन सी बुटीक से ख़रीदा है यानी कि उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि ये मैंने स्टिच किया है शुक्रिया ये नहीं कि मैं अब तारीफ़ें और दाद समेट रही हूँ ऐसा हकीकत में कि जब आप कोशिश करते हैं तो फिर कोशिश में कामयाबी ज़रूर हो जाती है अभी फ़िलहाल जो है वो एक अदर ट्रैक शामिल करेंगे प्रोग्राम में बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक है और जैसे कहते हैं ना कि न्यूली अपियर होने वाला, माइट भी यहाँ पर कोई आपने सुना हो एक आध बार, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में इसको अभी प्ले करने वाली हूँ। इन द मीनवाइल के आप जो है वो आपके पास टाइम है, आप शामिल हो सकते हैं, डायल कर सकते हैं 042 कोड लगाकर 111100101। वापिस पलट कर आते हैं इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद। स्टे ट्यून FM 101।

0: वो कहते हैं कि बातों बातों में खराफात पे आ सकता हूँ, जो भी कम ज़र्फ हो औकात पे आ सकता है, इतना मगरूर न बन सामने तारीख भी रख, इतना मगरूर न बन सामने तारीख भी रख, बांटने वाला भी खैरात पे आ सकता है। देखिए ड्रामा
1: और साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ।
1: और जनाब बात में वापस आते हैं, बातों का सिलसिला फिर से स्टार्ट करते हैं। लाइन पर कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, माजरत की थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा।
2: इट्स ओके, हैप्पी, कोई बात नहीं। चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, बुझे दीवे बल दे वेखे। चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, बुझे दीवे बल दे वेखे। हीरे दा कोई मुल न तारे, खोटे सिक्के चल दे वेखे। जिन्ना दाना जगत खोई, ओ भी पुत्र पल दे वेखे। ते लोकी केंदे दाल नी गलदी, असी ते पत्थर गल दे वेखे। चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, बुझे दीवे बल दे वेखे। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूं।
2: वेलकम खुशामदी जी आया नू, वेलकम बैक FM 101 रेडियो पाकिस्तान।
1: बहुत शुक्रिया मारा आपका, इतनी मोहब्बत का, इतनी चाहत का बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हूँ।
2: बहुत अच्छा शो करती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ स्किल आप ही दे जाती हैं हमें।
1: अच्छा, मैंने तो अभी अभी कोई स्किल के बारे में मैंने अभी बात नहीं की है, वैसे मैंने अभी करनी है।
2: अच्छा जी।
1: मैंने अभी करनी है।
2: और
1: सुनाए जी, और सुनाओ जी, और सुनाओ जी। आप मुझे बताएं कि अगर कोई स्किल सीखने का मौका आपको मिले, कोई भी चीज सीखने का मौका मिले, तो आप क्या सीखेंगी?
2: हाय अल्लाह, आपकी अगर मुझे ड्राइविंग सीखने का मौका मिले ना, तो मैं सबसे पहले गाड़ी चलाना सीखूंगी।
1: बस सारे ड्राइवर भगा देंगे।
2: फिर मैं जहाज चलाना सीखना है।
1: अच्छा,
2: पहले गाड़ी चलाना सीखना है, फिर जहाज चलाना सीखना है, फिर ट्रेन चलानी सीखनी है,
1: फिर ट्रैक्टर चलाना सीखना है, फिर ट्रैक्टर से फिर साइकिल पे आना है।
2: साइकिल आती है, मैंने बचपन में बहुत चलाई है।
1: अच्छा,
2: बाजू भी तड़वाया साइकिल चला के।
1: नहीं नहीं,
2: और बहुत अच्छा शो। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और आपकी हर नई ख्वाहिशात को पूरा करे। बहुत अच्छा शो, और आप जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज जा रही है, उनको सलाम, और स्पेशली अंकल हनीफ को, अंकल जीरे को, फरी आंटी, बहुत शुक्रिया आपने शहजादी का, बहुत शुक्रिया।
1: और आप शहजादी हैं, शहजादी हैं आप।
2: थैंक यू। और शमसी ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा सलाम, सभी मेंबर्स जितने भी हैं शमसी ग्रुप के, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। रजा भाई के वालिद साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आप भी, आपसे रिक्वेस्ट की थी, अगर हो सके तो प्ले कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, कोई सा भी अच्छा सॉन्ग आप फिर मेरे नाम लगा दीजिएगा और अपने नाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हमारा बेग हमारे साथ ही लाइन पर, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
1: अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मला खैर, आप कैसे हैं?
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
1: थैंक यू सो मच। मुझे पता चला आप कोयटा से लाहौर में आए हुए हैं।
3: बिल्कुल, अभी हम कोयटा में।
1: अच्छा, अभी फिर कोयटा चले गए हैं।
3: मुझ
1: तक इतना लेट पहुंची है ना, हवा ने लेट बताया।
3: बस बस, इंशाल्लाह आपको फिर आने वाला है, मैं अभी जल्दी पहुँच जाएगा।
1: अच्छा ठीक है। और कोयटा का मौसम कैसा है?
3: कोयटा का मौसम गर्मी बहुत ज्यादा है कोयटा में।
1: बस देख लें, सारी ठंडी हवाएं मैंने यहाँ पे रख ली हैं। अच्छा, मुझे अभी बाहर का पता नहीं है, अंदर बहरहाल एयर कंडीशन है फुल, इसलिए मुझे यहाँ पर ज्यादा वो लग रहा है, लेकिन जब मैं सुबह आई थी तब भी अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा वेदर था लाहौर का।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बस यहाँ की बस थोड़ा गर्मी हरियाला करके एक बारिश हो जाए।
1: इंशाल्लाह ताला बारिशें होंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी जो वो गर्मी का स्पेल है ना, वो अभी डिस्पेल होने वाला है, और अब बारिशों का जो है ना वो सीजन स्टार्ट होने वाला है, और क्योंकि मानसून जो है ना वो अब जान छोड़ देगी।
3: इंशाल्लाह जरूर, आपके ट्रैफिक भी जबरदस्त है, अगर मुझे सीखने का अगर मौके मिला तो जहाज पायलट हम बनेगा।
1: क्या, सॉरी, क्या सीखेंगे?
3: जहाज।
1: अच्छा, जहाज चलाना। अच्छा ठीक हो गया, पायलट बनेंगे, पायलट बनना चाहते हैं, ठीक है, वो सीखना चाहते हैं।
3: बिल्कुल, अभी तो शुक्र है मैंने ये कारोबार के द्वारा हुनर वगैरह मैंने सब कुछ सीख लिया हुआ है।
1: आपने क्या सीख लिया हुआ है?
3: मैंने बोला ये हुनर नहीं, कारोबार जो।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत बहुत आला, बहुत आला, यानी कि आप जहाज चलाना चाहते हैं, जमीनी काम सीख चुके हैं, अब फिजाई काम चलाना चाहते हैं।
3: बिल्कुल।
1: अच्छा ठीक हो गया, यानी कि कश्ती चलाना भी आ गई है।
3: बिल्कुल भूल गया।
1: चलिए ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका,
3: बहुत ज्यादा प्यारा आपके लिए, ठीक है, अल्लाह
1: हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जो मतलब थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कि टाइम गुजर चुका होता है, तो फिर यूट्यूब जिंदाबाद, उससे आप सीख सकते हैं, लेकिन उससे आप ओरिजिनल जहाज में बैठ के उसको उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बस ये थोड़ा सा फर्क रह जाता है। देखते हैं लाइन पर कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन?
4: मैं जी मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ।
1: मोहम्मद सलमान भट्ट, समनाबाद से,
4: लाहौर से।
1: अच्छा लाहौर से हैं, खुश आमदीद कहते हैं। समनाबाद भी तो लाहौर में ही है ना?
4: हाँ जी, नहीं फैसलाबाद में भी है।
1: अच्छा फैसलाबाद में भी है, चले मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया आपने सलमान आते साथ ही।
4: वो मैंने आपका प्रोग्राम पहले से सुना है, काफी अच्छे बात आई है शायद।
1: जी जी यकीनन,
4: शुरू से सुना, अच्छी अच्छा प्रोग्राम है, अच्छी बातें जो आपने कहा ना, सुबह उठ के जोर से पहले पहले काम, तो वो जैसे जैसे काम निपटते हैं बंदा की एनर्जी बढ़ती है,
1: बढ़ती है
4: अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ जी
1: ऐसे
4: काम, कामों की, काम के खत्म होने, काम के निपट जाने की खुशी होती है इंसान को कि मेरे काम होते जा रहे हैं, तो एनर्जी,
1: टाइम बच जाता है ना आपका, टाइम बच जाता है, आपके काम हो जाते हैं, फिर आपके पास रेस्ट का
4: वक्त, काम हो जाए खुशी होती है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है।
4: बड़े बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आप पीर के पीर आती हैं?
1: मैं असल में ट्यूसडे को होती थी, लेकिन आज से मैं मंडे के प्रोग्राम को जो है वो होस्ट करूंगी,
4: 11 से 11
1: बजे से 1 बजे तक,
4: हर पीर को।
1: जी जी हर पीर को, जब जब पीर आएगा तब तब ये वाला पीर आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह
4: हाफिज़।
1: वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट, अपने तमाम सुनने वालों को बताते चलें कि अब से, यानी कि अब से ये जो ये वाला स्केड्यूल है आगे चेंज हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। एवरी मंडे आपके साथ रुबीना वजाहत होंगी और एवरी ट्यूसडे आपके साथ जूबिया शफीक होंगी। लाइन पर कॉलर हैं, कौन है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
5: जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपकी?
1: मैं ठीक ठाक, रजा भाई आ चुके हैं
5: जी, और सब ठीक है
1: अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है? उनके लिए बहुत सारी दुआ के लिए मैसेजेस आ
5: रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत मोहब्बत से करता हूं, शुक्रिया भी अदा करूं कि अभी ब्लड लगा हुआ है।
1: अल्लाह ताला को सेहत दे।
5: मैं शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की कि सब का लोगों का जो मेरे अपने फैमिली मेंबर है, रेडियो के लिसनर है, आज हैं, इतने स्टाफ है जो मेरे लिए काफी दिनों से मेरे वालिद के लिए दुआएं कर रहे हैं।
1: जी जी,
5: तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर जिंदगी मुझे मौका देती तो मैं डॉक्टर बनता, क्योंकि मैंने जो हॉस्पिटल डॉक्टरों के नखरे देखे हैं, मेरे राजा चौधरी में वो नखरे नहीं होने चाहिए। एक डॉक्टर की जो अब जरूरत है ना,
1: जी जी,
5: तो मैं बनता जिंदगी मौका देती दोबारा मुझे, मैं डॉक्टर बन के सबका लाइफ।
1: सही सही, यानी कि आप एज अ डॉक्टर जो है ना ये वाली इसमें महारत हासिल करते हैं कि किस तरह से क्योर किया जाता है लोगों को।
5: देखो अभी देखा उसको हम देखा है ना, उससे डॉक्टरों के देखो टाइम पे नहीं, कब के आगे बैठे हैं अपनी मर्जी के मालिक है, यानी कि मरीज के साथ क्या कंडीशन है, मरीज को क्या ड्यूटी करनी है, पता है उनको पैसे मिल जाने हैं। देखो नहीं, डॉक्टर के लिए सबसे पहले एक टॉपिक होना चाहिए प्रशासकीय, वो भी इंसान ही है, जो पेशेंट जो मरीज है वो भी इंसान है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है,
5: तो इंसानियत का भी साथ लेके चलना चाहिए। तो मैं जिंदगी मुझे दोबारा मौका देना, दोबारा मैं एक डॉक्टर बनूंगा इंशाल्लाह, तो वो फीस भी लगा काम करेगा
1: इंशाल्लाह ताला। ये है कि तो, उसका मौका किस तरह से मिल सकते हैं हम उस पर बाद में करते हैं, मैं ऑन एयर आके थोड़ी सी बात करूंगी। ठीक है,
5: मैं
1: नहीं नहीं जनाब, आप ऑन एयर ही हैं।
5: एक दफा फिर सब दोस्तों का शुक्रिया जो वक्त मेरे साथ है, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला इतनी सारी दुआएं अल्लाह ताला खैर करेंगे। अल्लाह हाफिज। देखिए माँ बाप कितने कीमती रिश्ते होते हैं, पेरेंट्स का नेमो बदल कोई नहीं होता, और देखें कि उनकी आवाज़ में वो चीज़ महसूस हो रही थी, वो जो एक कर्ब था वो महसूस हो रहा था। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आपके जो आपके वालिद के लिए बहुत सारी दुआएं हैं रजा भाई, कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। लाइन पर एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम, आप जी की हाल ठीक हो?
1: मैं ठीक हूँ बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं?
6: बोधी जट गल कर रहे हैं, आप जी रावी के कंडे से।
1: जी रावी के कंडे से बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आपको अगर स्किल सीखने का मौका मिले तो आप क्या सीखेंगे?
6: आप जी सिखा किसी साढ़े को धोखा नहीं दिता जाता, किसी के झूठ नहीं बोलिया जाता, खरे कि वाह कर लेंदी है, असं यही चाहने की ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵੱਲ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਕੋ ਸਭ ਸਾਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਆਤੀ ਹੈਂ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
6: ਹੋ। ਓਏ ਡਰਾਈਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਆਪੀ ਜੀ, ਕਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਮ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ, ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਆਪੀ ਜੀ।
1: ਜੀ ਜੀ,
6: ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਅਮਤਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਧੀ ਜੱਟ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ।
1: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਗਾ।
6: ਆਪੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
1: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
6: ਮਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
1: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। جناب 12:37 ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ پروگرام میں روبینہ وجہت، میرا اور آپ کا ساتھ ٹھیک دن کے 1 تک رہنے والا ہے۔ پروگرام میں شامل کرنے جا رہی ہوں ایک عدد ٹریک، اور اس ٹریک کے لیے ریکویسٹ کی تھی مجھے کس نے، امارا بیگ نے۔

सो ऐसा करते हैं कि इसको पहले प्ले करते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं और फिर उसके बाद पलट कर वापिस आते हैं। थोड़ा सा सैड सा तो है, अब मुझे क्या पता, हमारा को इतना खुश करने की कोशिश करते हैं और ये कहती भी हूँ कि खुश रहा करो, लेकिन हमारा जो है ना वो सब कुछ लपेट के अपने पास रख लेती है।

0: और हमारा सिर्फ एक बात कहूंगी कि परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना।
1: कैसा है ये
0: जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता।

0: जी, इश्क में सुत बुत खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी, और इतना ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इसलिए जरा थोड़ा सा सेंसेस में आ जाओ बस, अब बहुत हो गया। अस्सलाम वालेकुम, लाइन पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं आफिया खान फ्रॉम लाहौर से, कैसी है आप?
0: मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आफिया, आप कैसी हैं?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है इसलिए मैं आपको वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ।
1: दूसरी बार मैंने आपसे पहले भी बात की है।
0: आफिया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है सच में।
1: चलो कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ मैंने बहुत दिनों बाद सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करती है, और मैं टॉपिक के बारे में ये कहना चाहूँगी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक ईमानदार ऑफिसर बनना चाहूँगी।
0: गुड।
1: और एक डॉक्टर भी बनना चाहूँगी, ईमानदार, जो सब मरीजों का ख्याल करे, वो वाले डॉक्टर बनना चाहूँगी। और ईमानदार ऑफिसर बनना चाहूँगी, सबके साथ अच्छा सलूक और अच्छे अखलाक से पेश आऊँगी, इस तरह बदतमीजी से नहीं। और बाकी के शौक है जो लड़कियों के होते हैं, सिलाई की, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिलाई भी आती है, मेहंदी भी आती है लगानी,
0: कमाल,
1: कुकिंग, सब कुछ आता है। बस ये ईमानदार ऑफिसर बनना, मैं बहुत शौक है मैं ईमानदार ऑफिसर बनूं।
2: इसको ना 50 पर वाइंड अप कर लेना प्रोग्राम को।
0: अच्छा ठीक है जी जी, आप बात
1: कीजिए
0: जी जी। आप
1: ऑन एयर? नहीं
0: नहीं नहीं, आप ऑन एयर हैं, ऑन एयर हैं आप।
1: अच्छा जी, और मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप एक सॉन्ग प्ले कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
0: चलिए, टाइम बहुत कम है लेकिन आप बताइए कौन सा।
1: सरमद कबीर की आवाज़ में, मुंह का बेनू करके, एतबार के लिए।
0: चलें ठीक है, मैं देखती हूँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
1: शुक्रिया आपका भी, अल्लाह
0: हाफिज़।

जी आफिया हमारे साथ थी, थैंक यू सो मच आफिया, आपका प्रोग्राम में शामिल हुई, और सच में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन ये कि आपने याद रखा, थैंक यू सो मच, अब आपको मैं भी याद रखूँगी। उमेद जुनेद, आप प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई, उमेद जुनेद के बारे में बताते चलूँ कि वो इस वक्त जो है वो उस पाक सरजमीन पे, मुकद्दस सरजमीन पर हैं, उमरा परफॉर्म करने के लिए गई थी, और बाकायदा उन्होंने मुझे बताया भी था, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप वापस आ गई हैं तो फिर मुझे अपने होने का एहसास दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, अगर आप अभी तक वहीं पर हैं तो आप जब वापस आएँगी तो ज़रूर बताइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफ़र जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और अच्छा गुजरे, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को मुंतखब करते हैं अपने इस मुकद्दस फरीजे के लिए, मुकद्दस सरजमीन के लिए, और अपना मेहमान बनाते हैं यहाँ पे, जहाँ पर भी मुस्लिम रहते हैं, जहाँ पर भी मुसलमान आबाद हैं इस रोए ज़मीन पर, सबके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन एक ख्वाहिश ज़रूर होती है, और मेरे ख्याल में बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर ये चीज़ होनी भी चाहिए कि हम बहुत सारी जगहों पर जो है वो दस्तरखान जो है वो सजाते हैं, खाते हैं, दस्तरखान की जीनत बनने वाली तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, उनका उनको चखते हैं और मेहमान बनते हैं, लेकिन एक जो मेहमान है ना उस मुकद्दस सरजमीन का, तो उसके उस मेहमान के लिए वहाँ पर जाने के लिए हर एक के दिल में ख्वाहिश रहती है।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

जिस नौत मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता, और बिल्कुल ये सफ़र जो है वो कटता जाएगा, और कटने के बाद जो है वो एक नए सफ़र का आगाज़ होगा। इसी तरह से होता है कि कुछ लोग जो है वो कुछ अरसे तक मंजर आम पर रहते हैं और उसके बाद वो मंजर से गायब हो जाते हैं और कुछ नए चेहरे वहाँ पर आते हैं। 12:50 हो जाते हैं, बहुत ही मुख्तसर सा टाइम है, और प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ जाते हुए मैं सिर्फ चंद अल्फाज का जिक्र करना चाहूँगी, चंद अल्फाज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो अल्फाज क्या होंगे, वो अल्फाज कुछ यूं हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो आपके साथ बड़े मुखलिस होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनकी मुखलिसी के बारे में आप नहीं जानते। जैसे अभी टॉपिक मैंने रखा और मैंने अपने टॉपिक में पूछा कि क्या चीज़, क्या स्किल आप सीखना चाहेंगे, तो देखें बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम ये चीज़ सीखना चाहेंगे, हमें मौका मिला तो हम ये करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, कुछ ऐसी भी ज़हनियत के और थॉट्स के मालिक थे कि जो कह रहे थे कि हम अच्छा इंसान, ईमानदारी के साथ काम करना चाहेंगे, हम ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे। और मतलब ज़िंदगी तो डेफिनेटली ईमानदारी के साथ आप बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं, गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे जो है वो मुल्क कौम का नाम भी रोशन हो, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों सवर जाए, हमारी क्या कहते हैं जो आकबत है वो भी सवर जाए। सो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं कि जिनको अपने साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी लोग बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बंदे का पुत्र बन जाना सबसे बड़ी स्किल होती है। ये बातों ही बातों में मैंने ऐसे ही तस्करा किया। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम चाहोगे, कोशिश करोगे तो मिलेगा, ये खालिक है। और मखलूक में अगर हम मखलूक की बात करते हैं, इनके खालिक और मखलूक का फ़र्क क्या है, तो खालिक कहता है कि तुम चाहोगे तो तुम्हें मिलेगा, यानी कि अल्लाह ताला कौन कहता है तो हो जाता है। और अगर मखलूक की बात करते हैं तो मखलूक यानी कि हम सोचते हैं, हम कहते हैं, हम कोशिश करते हैं और फिर होता है। हमने सोचा ही नहीं, हमने कोशिश नहीं की, हमने किया नहीं तो फिर कैसे होगा। सो आप किसी भी चीज़ को करने का इरादा रखते हैं तो उसके लिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी में कोशिश अगर कामयाब ना हो तो नाकामी की तरफ भी नहीं धकेलती, बल्कि एक ना एक दिन आपको कोशिश कामयाबी की तरफ ज़रूर धकेलती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, बहुत सारी जो नेक तमन्नाएँ हैं उनके साथ छोड़े जा रही हूँ। कोई बात रह गई हो, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। इब्राहिम कलेरी ने हमें ज्वाइन किया था डीजी खान से, आप हमारे साथ रहे, आपका भी बेहद शुक्रिया। तमाम सुनने वालों का बेहद शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल होने वालों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रूबीना बजा दे साइनिंग ऑफ बाय सेइंग अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय।

0: मेरी बर्थ सर्टिफिकेट है ना, वो जहाँ मेरी वो पैदाइश का शहर है वहाँ गई थी नादरा के दफ्तर, तो वो कह रहे कि आपकी पहले कंप्यूटराइज नहीं था सिस्टम ना, तो वो रजिस्टर वगैरह पे लिखा था, तो अब आपका रिकॉर्ड जल गया, तो वो कंप्यूटराइज नहीं है आपकी कोई, मुझे हमें पता नहीं है कि कब की आपकी डेट ऑफ बर्थ है कब की नहीं है, तो वो कह रहे थे कि अब आपका आईडी कार्ड ये नहीं बन रहा ना मेरा, बहुत मुश्किल है, कुछ काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ लेके आए, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए या जमन पर्ची लेके आए तो उससे बनेगा, तो सर क्या मेरी बन सकती है इसके बगैर?
1: आप बेटा मुझे ये बताएं कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है नहीं बना हुआ ऐसे ही है, और आपकी उम्र कितनी होगी अभी?
0: तकरीबन 20+ है।
1: ठीक है, और जो है आपका वो कार्ड नहीं बना रहे नादरा के ऑफिस वाले, ऐसे ही है?
0: जी,
1: अच्छा, और आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं?
0: अनमैरिड हूं।
1: ठीक है, और आपके पास जन्म पर्ची भी नहीं है, वालदैन जिंदा है जी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह सर।
1: अच्छा, तो आप उनको लेके नादरा के किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। और पैदाइश का अंदराज कहाँ हुआ था आपका?
0: हमारा सफदराबाद जिला शेखपुरा वाले साइड।
1: वो आपको क्या कहते हैं?
0: वो यही कहते हैं कि आपका रिकॉर्ड जल गया, हमारे यहाँ आग लगी थी, रिकॉर्ड जल गया।
1: उन्हें तो यही बात आपको लिख के दे दें, यही बात आपको लिख के दे दें, प्लस आप जब नादरा के ऑफिस जाएं और नादरा वाले आपको इनकार नहीं कर सकते आपका शनाख्ती कार्ड बनाने से, वो आपका प्रोसेस करेंगे, आपको फॉर्म देंगे, जो कागज़ उनके चाहिए वो उसके ऊपर लिखेंगे। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई मसला आता है तो हमारी हेल्पलाइन है 111-786-100। ठीक है, 111-786-100।
0: 111-786-100।
2: जी मैं आपको बता दूं, 111-786-100।
0: ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।
2: ओके, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। और जी बटी साहब, आप क्या बता रहे थे कि टेलीफोन नंबर है जी 111-786-100, इस पे आप कॉल करके आप अपना इशू जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बात कर रहा हूँ।
2: जी मोहम्मद शहजाद, की हाल है? ठीक ठाक जी,
1: बड़ा डनका है लाहौर शाहबाग वालिया का,
3: दुआवां चाहिदियां जी, असीं ते बंदा किसी काम दा नहीं
1: जी, ताडियां
3: दुआवां
1: हुकम करो।
3: मसला ये बड़े है के थोड़ा जा घरेलू मसला है बनया कि बच्ची नू कहंदे तलाक देनी है ते कागज तुसी बनवा के लियाओ ते असी साइन करांगे।
1: अच्छा जी, अच्छा,
3: ते एदे बारे मैनू कोई दसो कि किस दा मसला हल हो सकदा?
1: अच्छा भाई जान, अगर ते देखो दो तरह दी तलाक हुंदी है, एक हुंदी है जिहड़ा मुंडा देंदा है, ठीक है, दूसरी तलाक हुंदी है जिहड़ी कुड़ी लैके आंदी जिहनूं उहनूं कोर्ट च जाके खुला लियाणा पैंदा है। लेकिन तुसी यह कहना चाह रहे हो कि बामी रजामंदी नाल तलाक हो रही है, जी है जी?
3: जी वो मुंडे वाले कहंदा जी मैं नहीं मसाना चाहंदा, मैं
1: अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, उन्हों को कि तू नहीं मसाना चाहंदा ते तू लिख के दे स्टाम्प पेपर, ठीक है, ते यूनियन कौंसल च जा, एदा तरीका कर रहा होएगा कि वो लिखेगा जी, एक स्टाम्प पेपर लेंगा, वो स्टाम्प पेपर ते वो लिखेगा, ठीक है, ते तुहानू पहला नोटिस भेजेगा, तुहानू भी भेजेगा, तो जिथे तुसी रह रहे हो तुहाडे इलाके दी यूनियन कौंसल चो नोटिस आएगा, फिर वो यूनियन कौंसल दा जिहड़ा ADLG हुंदा है, जिहड़ा मसालती कौंसल दा चेयरमैन हुंदा है, वो नोटिस करेगा तुहानू भी, तो उन्हूं दोवां पार्टियां नूं बुलाएगा, सुनेगा, पहली कोशिश उहदी इही होएगी कि वह मसालत करा दे, तुहाडी सुलह करा दे, अगर खुदा ना खास्ता सुलह नहीं हुंदी तो फिर दूसरा नोटिस होएगा, उस तो बाद फिर तुहानू बुलाएगा, फिर सुलह की कोशिश करेगा, फिर भी नहीं होंगी तो फिर तीसरा नोटिस करेगा, फिर तुहानू बुलाएगा, फिर तुहानू सुनेगा, इस तरह करके 90 दिन का एक मुसालती कौंसल का एक केस चलेगा, जिवें अदालत चलती है, उस मुसालती कौंसल की सब तो पहली कोशिश यही होएगी कि दोवां फरीकैन

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: आ गया गुलाम पियो लैचियां बदाम पियो, आ गया गुलाम पियो लैचियां बदाम पियो।
1: लंबी कतारें ना खुशगवार लोग।

0: हेलो
1: जी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन?
1: मैं कह जी दो भाभी सानू बनदे हो, एक बोधी जट एक मेनू दे दो लतीफ मुगल नू।
0: कौन बोल रहा जी?
1: लतीफ मुगल बोल रहा मैं क्या
0: जी। लतीफ मुगल की हाल है? ठीक ठाक जी, बड़े दिन बाद कॉल आई थोड़ी।
1: होर
0: सब खैरियत ठीक ठाक जी? चलो चलो, बड़ी मेहरबानी तुसीं कॉल कीती, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके ए गाना इन्ना मेलोडियस, इन्ना खूबसूरत, इन्ना खूबसूरत है। मासूम अब्दुल्ला का म्यूजिक है, यकीन करो दिल करता है कि इस गाने नू सुनी जाओ, सुनी जाओ, सुनी जाओ, सुनी जाओ। ते लिरिक्स ने तर्ज बनाई ख्वाजा परवेज ने। मासूम अब्दुल्ला का म्यूजिक जो भी सुनते हैं यकीन करो दिल खुश हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन। वरुण एफ एम पाकिस्तान अपना फैमिली स्टेशन, साढ़े नाल ना रहना तुसी। और वेला बिल्कुल थोड़ा जहा रह गया, अगले कॉलर कॉलर आए और चले गए। देखते हैं जी कॉलर, इस तो बाद असी फेसबुक के मैसेज भी पढ़ा। हैलो
2: चाची जी, दूसरी शादी करन तो पहले याद रखना डंडा चाची ने कोल ही रखे है। फिर
0: डंडा पीर बिगड़िया तिगड़िया था है ना।
2: नारे दूसरी गल, मैं अपनी चाची दे नाल आ, मैं काम नहीं आंदा आंगी, पहले कह रही। हां जी
0: और ठीक ठाक जी तुसी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह दुआवां ने ताडियां। मैं क्या जरा देखिए ना ते नाले जरा दसिए चाचू नु ते चाची जी ताडी भतीजी भी सुन रही है।
0: बिल्कुल ठीक हो गया।
2: हां जी ते ठीक है सर। हां जी
0: और की कहोगे? अम्मा दी टोकरियां घलो फिर असीं खुश होवांगे। शहजाद दी लो जी, प्रोग्राम पैगाम भी शामिल करने ने। और

मामला एम इजाज़ अली तो बाद असगर एम ने और रोज़ी रिजवाना साहिबा ने मलिक मोहम्मद आदिल साहब ने उस्मान अली साहब ने और इन्हों के नाल नाल मौजूद ने जनाब आशिक खैसकेली। बड़े दिनों बाद इन्हों का सानू पैगाम पहुंचे है, मतलब इन्होंने प्रोग्राम पसंद किया है, जुगनू जूनियर ने प्रोग्राम पसंद किया तो थोड़े कुछ पैगाम भी पहुँचने, इन्होंने भी प्रोग्राम शामिल कर लिए। वेरा तो बड़ा थोड़ा जहा, मगर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ पढ़ लवा। रोज़ी रिजवाना ने कहा नाइस शो, उस्मान ने कहा सदा सलामत रहो, एम इजाज़ ने कहा शरकपुर शरीफ तो अब्दुल्ला माला खेल क्वेटे तो वेलकम किया है, नवाब शाह तो खास के लिए सारे प्रोग्राम शामिल हुए ने, और कौन आशिक अली, आशिक खास के लिए, उस्मान अली चिट्टा चौंसा दे फायदे बयान कर दियो, प्रोग्राम बहुत वधिया है। ओ शहजादे उस्मान अली अब चिट्टा चौंसा है, ठीक है। एम इजाज़ अली सलामुअलैकुम, नज़ीर खोसो सोबतपुर तो, जुगनू जूनियर लाहौर तो, सठ बिस्मिल्ला जी यानू। एम इजाज़ अली वेलकम, खुश आमदेद। मलिक मोहम्मद आदिल ने सलाम कर लिया, जुगनू जूनियर ने अहमदुल्ला माला खेल, एम इजाज़ अली जुगनू जूनियर ने पोइट्री भी कर ली, नज़ीर खोसो एम इजाज़ अली, और उस बाद एम इजाज़ अली के ढेर सारे पैगाम। बरबर एफ एम पाकिस्तान अपना फैमिली स्टेशन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम शामिल हो जे, तो प्रोग्राम के कॉल भी आ रही ने, वेला साढ़े को बिल्कुल खत्म हो गया, तो प्रोग्राम के आखिर के इस वे इंजॉय कर रहे जे ए खूबसूरत जहा गाना, तो यदू एक थोड़ा जहा बोल मैं सुनावगा, उस बाद अं खबर वाल बदागे। अपने मेज़बान वसीम अहमद टेरा दो टेरा बारी याद रखना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के फिर मुलाकात होगी, दुआ च याद रखना, फिर मुलाकात दुआ भी करना कि मुलाकात होवे, इंशाल्लाह फिर मिलांगे, रब रखा।

मुझे भूल न जाना, मुझे याद न आना।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
0: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: Sunte rahiye FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS, FinTech, HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
0: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, HealthTech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान के

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवाना महताब से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी सिफारतखानों को हिदायत की है कि वो मुल्की अफरादी कुव्वत के लिए रोजगार के मौके की निशानदेही करें। सदर आज से किर्गिज़िस्तान का 4 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी अमन और खुशहाली के लिए भरपूर आलमी तआवुन के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। और वज़ीर ख़ज़ाना ने आज कराची में इन्वेस्ट पार्क ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह किया।
1: This is FM 101.1.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
4: आपने FM 101 ट्यून किया।
5: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है. पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है Prime Minister's Cloud Program for Startups, AI, SaaS, FinTech, HealthTech. इसके अलावा तमाम startups को smartly scale करने के लिए cloud infrastructure पर $13,500 तक की reimbursement मिल सकती है. Tier 1 के लिए $6,000 और Tier 2 के लिए $7,500 और इसके साथ Expert Advisory Committee की support. Program में apply करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026. Reclaim your cloud spend. अभी apply करें. ignite.org.pk पर.
3: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: Big idea? Check. Passion? Check. लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है मगर अब नहीं. Ignite अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स. टीयर 1 और टीयर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं. आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर. एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है.
4: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम लाहौर। दिस इज योर आज हमदा खान ऑफ रेडियो पाकिस्तान FM 101 के लाइव ऑन लाहौर स्टूडियो से। जी हाँ जनाब, लाहौर स्टूडियो से एक बार फिर आप सबको वेलकम करते हैं, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने शो में, जिसमें मेरा और आपका साथ रहेगा। ठीक ठीक ठीक जी, 8 बजे तक 6:06 हो गए हैं। आज 6 जुलाई 2026 है और दिन है वही जिसको मैं खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हूँ बल्कि दिन तो गुजर चुका होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की शाम को खूबसूरत बना सकूँ, थोड़ा सा आप लोगों को ईजी जो है ना फील करवा सकूँ, थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो सके, थोड़ा सा इंटरटेन हो सके और थोड़ा सा अपने जो मंडे है ना मंडे स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर सके, बिकॉज आई नो कि मंडे का एक अच्छा खासा स्ट्रेस होता है और हम अक्सर इस पे बात करते हैं कि मंडे का स्ट्रेस जो है ना वो वाकई एक स्ट्रेस होता है। चाहे आपके ऑफिस में नहीं भी कोई बर्डन होगा ना, घर में भी आपने कुछ नहीं करना, बट इट स्टिल फील्स लाइक मंडे जो है ना, मतलब जैसे आपको पता चलेगा ना आज मंडे है तो पता नहीं आपके दिमाग में अजीब सी एक वो टेंशन सी पैदा हो जाएगी, अजीब सी एक इरिटेट होने लग जाओगे, आपको कुछ करना है, कुछ रह गया बट एनीवेज जी, मंडे को थोड़ा सा ईजी करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की तरफ फोकस करते हैं। बट एनीवेज उसके साथ साथ मंडे तो है ही है, लेकिन मौसम मैं कहती हूँ जी, मौसम लाहौर में तो अखीर हुई हुई, लाहौर के अलावा बाकी शहरों में भी यकीन है। इस टाइम जो मौसम है, ये जो प्री मानसून का मौसम है जी, इसमें जहाँ तक हो सके एक तो एहतियात तो करनी है, लेकिन उसके अलावा ये जो हब्स है, ये ह्यूमिडिटी लेवल जो इस कदर बढ़ा हुआ है ना, मुझे नहीं समझ आती कि मतलब आप किस तरह से सुकून हासिल कर सकते हैं कि मतलब इस ह्यूमिडिटी के लेवल के साथ जो है ना सर्वाइव करना सीरियसली बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता जी, इंसान जो है ना इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड रहने लग जाता है कि बस ये अजीब सा मौसम है, इसमें ना आपको किसी तरह ना सुकून नहीं मिल रहा होता। सो एनीवेज जी, आज मुझे लगा कि आज लाहौर का मौसम जो है ना सुबह ज़रा थोड़ा सा जिसे कहते हैं ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा कम हुआ, थोड़ी कोई हवा लग रही थी और फील हो रहा था कि मतलब कुछ थोड़ा सा ना आज मौसम बेहतर है। बट एनीवेज जी, अभी मैंने चेक किया, मैंने कहा वेदर चेक करते हैं वेदर अपडेट्स क्या आ रही है। सो अभी इस टाइम में जी 36 टेम्परेचर है, विच इज़ ओके, बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि लास्ट शो में मैंने आप लोगों को बताया था 41 जा रहा था, इवन शाम 6 बजे जो है ना वो 41 था। तो अभी जी ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो 51% है, स्टिल ज़्यादा है, लेकिन ये है कि ऐसे मौसम में, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही और ऐसे मौसम में किसी इलाके में बारिश होती है किसी में नहीं होती, तो इस तरह से ह्यूमिडिटी जो है ना हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट अगर बारिशें होती हैं, मानसून क्योंकि स्टार्ट हो गया है बहुत सारे इलाकों में, स्पेशली अभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो बारिशें हो रही हैं ऐसे में, तो ऐसे में एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूर इख्तियार करनी है, ऐसे में अपना ख्याल रखना है, तारों से दूर रहना है, कोशिश करनी है कि ऐसे किसी भी किस्म के जो है ना नदी नालों दरियाओं में तुगियानी आई होती है तो वहाँ से प्लीज़ दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। इन्जॉय ज़रूर करें, देखें मौसम है, इन्जॉय करें, जाएं, छुट्टियां हैं बच्चों के साथ जाएं, इन्जॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूर इस चीज़ को देखा करें कि किस चीज़ में सेफ्टी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो शायद आप अपने शौक़ के लिए कर रहे हैं लेकिन उसका अंजाम जो है ना वो अच्छा नहीं है, तो उसमें जो है ना आपको ज़रूर एहतियात करनी चाहिए, समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कोई भी ऐसी छोटी सी भी हरकत आपकी जो कि जिसे मैं क्या कहूँ कि जो कि बेवकूफ़ी हो सकती है, जो कि ऐसी हो सकती है, नादानी हो सकती है आपकी, जो कि किसी भी किस्म के नुकसान के जो है ना सबब बन सकती है ना, तो उससे आपने ज़रूर बचना है, ज़रूर इंजॉय करना है जी। और अभी हम शो को भी इंजॉय करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा है कि जी शाम हो गई है, तो शाम हो गई तो सबसे पहले एक खूबसूरत सा ट्रैक शामिल करते हैं, और ये ट्रैक इतना खूबसूरत है आतिफ असलम की आवाज़ में, और ये ट्रैक मुझे बहुत पसंद है। सो आप लोगों को डेडिकेट करती हूँ जी, एक खूबसूरत सी शाम का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ, लौट कर आते हैं फिर

All right. Welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 के live on Lahore studio से आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को. मेरा आपका साथ रहेगा ठीक जी 8 बजे तक. 6:15 हो गए हैं और बिल्कुल आप लोग कॉल्स कर सकते हैं. अभी ऑफ एयर कॉल्स का सिलसिला जारी हो चुका है जी, शुरू हो गया है. 0422111 पर कॉल कर सकते हैं. इसके साथ साथ फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, fizz.com/FM101 लाहौर के पेज पर आपने जाना है जी. पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं. और मैं बात कर रही थी जी ह्यूमिडिटी की, और मैं बात कर रही थी कि ये जो जुलाई वाला मौसम होता है ना, जुलाई अगस्त ये महीने बड़े मुश्किल गुजरते हैं. और स्पेशली जो है ना, इतनी मतलब हब्स होती है और आपको लग रहा होता है कि बिल्कुल हवा बंद हो गई है. वो जैसे बड़े कहते हैं ना, हवा बंद हो गई है हवा. लेकिन आज जो है ना, वो कुछ लगा कि शायद लाहौर का जो है ना थोड़ा सा मौसम खुला है और थोड़ा सा आज लग रहा था कि ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हुई है. बट एनीवेज जी, मैं ये सोच रही थी कि जब भी इस तरह का मौसम होता है ना, तो हम सोचते हैं कि अब क्या करें, किस तरह से जो है ना थोड़ा सा आपको जो है ना वो अच्छा लगे, थोड़ा सा अच्छा फील आए, क्योंकि इतनी गर्मी होती है और इतना हब्स होता है. सो क्या ऐसा है जो आपका एक वो जैसे कहते हैं ना टोटका हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको खानी या पीनी पसंद हो इस मौसम में, स्पेशली अपने आप को थोड़ा रिलीफ देने के लिए, थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए, तो वो क्या ऐसा है? कोई ड्रिंक है, कोई शरबत आप पीते हैं या क्या पीते हैं? मैं तो वैसे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा जो तरीक़ेकार है या मुझे जो मैंने जो एक टेस्ट किया ना पिछले साल से, एक चीज़ मैंने टेस्ट की, वो ये था कि आजकल जैसे लीचीज़ का मौसम है, हमने मैंगो के सीज़न की तो बात की है, मैंगो तो है ही है, बट लीची भी जो है ना इट्सेल्फ, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि लीची जो है ना फुल ऑफ विटामिन सी है. अब लीची क्योंकि फुली एक सोर्स ऑफ वाटर है और बिल्कुल उसमें पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. सो जी, जब आप उसको फ्रीज़ करते हैं ना, अगर आप कभी ट्राई करें, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो उसको कभी आप फ्रीज़ करके खा कर देखें, आपको मज़ा आएगा. वो इतनी अच्छी फ्रीज़ सॉलिड हो जाती है, और फिर जब आप उसको ठंडी लीची को खाते हैं ना, वो सारा उसका जूस जो है वो फ्रीज़ हो गया होता है. वो एक चीज़ मैंने ट्राई की है कि जब कभी मेरी बहुत ज़्यादा मुझे लगे ना कि जुलाई वाली जो ह्यूमिडिटी है ना ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक ये चीज़ करके देखती हूँ अगर पॉसिबिलिटी हो तो. ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करके मुझे जो है ना ज़रूर बताना कि कभी फ्रोज़न लीची करके जो है ना वो खाएं आप. ऑलराइट जी, और वैसे भी जो कहते हैं कि जो सीज़न का फ्रूट होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है, उसके बेनिफिट्स भी, और उसका जो आपकी बॉडी पे एक असर होता है, जो बेनिफिट्स उसके होते हैं वो प्रॉपरली अपने सीज़न में अच्छे लगते हैं. जब आउट ऑफ सीज़न आप कोई फ्रूट खाते हैं तो उसका उतना मज़ा नहीं आता. सो जो फ्रेश फ्रूट होते हैं उनको सीज़न में इंजॉय करना चाहिए. इसलिए आजकल लीची है, आजकल मैंगोज़ हैं, तो इनको फुली जो है ना इंजॉय करें और खाएं, मज़ा करें. और घूमने जाना है, फिरने जाना है, तो मैंगो पार्टी तो आपको पता बनती है ना. फिर कहीं भी जाते हैं तो मैंगो ठंडे करके खाना, इसी तरह से लीची को भी जो है ना वो किसी दिन आपने फ्रीज़ करके ट्राई करना है और फिर मुझे आपने बताना है. और जी, आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला जारी है. सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है. आफ्टर सो लॉन्ग इन्होंने कॉल किया, लेकिन आफ्टर सो लॉन्ग तो मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरी बात नहीं हो सकी. बट अगर मैं इनकी साइड ऑफ स्टोरी देखूँ तो इन्होंने लास्ट मंडे जी 135 कॉल्स की हैं. मतलब कैसे, मैं खुद हैरान होती हूँ कि आप लोग इतना इतना इतना इतना वेट करते हैं ना. और बहुत अच्छा लगता है सुन के भी, और साथ में थोड़ा सा दिल भी टूटता है कि मतलब कैसे कॉल नहीं मिली 135 कॉल्स. और अजय ये भी यही बात कर रहे थे कि आजकल जो हब्स का लेवल है, जो ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है, तो ये भी बता रहे थे कि इन्होंने भी अपना वर्क जो है ना वो एक शॉप से जो है एक बुटीक पे शिफ्ट किया है, जहाँ पे एसी लगा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर काम इस तरह का है और उसमें जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है. एनीवेज जी, अगर आप लोगों के पास भी कोई टोटके हैं ना और कोई अच्छी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोग इंजॉय करते हैं, स्पेशली इस ह्यूमिडिटी के मौसम में जो है ना, ख़ास तौर पे क्योंकि कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, तो ऐसे में जो है ना बड़ा ही एक अजीब सा आपको फील होने लग जाता है. या तो फिर होता है कि खुल के बारिश हो और फिर सब जगह बारिश हो और फिर उसके बाद जो है ना ये ह्यूमिडिटी जो हब्स है ना वो ख़त्म हो जाए. लेकिन जब ऐसा नहीं होता, कुछ एरियाज़ में बारिश होती है, कुछ में नहीं होती, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी और बढ़ जाती है. तो ऐसे में क्या ऐसी चीज़ें जो आप इंजॉय करते हैं, जो लगता है आपको कि ये खा के या ये वाला जो शरबत है ये पी के या कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको सुकून मिलता हो, वो ज़रा आपने मेरे साथ शेयर करना है. वो कुछ स्ट्रीट फूड भी हो सकता है, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप खुद बनाते हैं.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

ऑलराइट जी, ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। और बड़े मजे की हम बात कर रहे थे ना अभी, मैं आप लोगों को कहती थी कि सीजनल फ्रूट खाना चाहिए, मैंगो पार्टी जो होती है, इसके अलावा मैं लीची की भी बात कर रही थी। अभी हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब मौजूद थे ऑफ द एयर, तो कहते हैं कि हमने तो बचपन में बड़े बड़े तरीकों से मैंगो खाया, आम खाया, और जिसे कहते हैं ना आम खाना है और पूरे हाथ मुंह भर जाने, इवन कपड़े तक भर जाने। तो अब के बच्चे जो है ना, कहते हैं उनको ऐसा सलीका आ गया है कि वो इतने तरीके से काट के खाते हैं। और वाकई ये बात सही है कि मैं कहती थी, मैं अपने बचपन में मैंने भी आम ऐसे ही खाया कि हम लोग, मुझे याद है कि परात में रख के जो है ना हमने बैठ जाना बड़ी सी थाली में, और बैठना भी कमरे में नहीं है, जिस सहन में बैठना, ताकि जितना भी कोई मेस क्रिएट होना ना, कपड़े भरने, मुंह, बाजू, तो वो जो है ना सारा जो है ना सहन में बैठ के ही खाना है। और मोस्टली ऐसा होता था कि बारिश हो रही है तो इस तरह से मैंगो रात में रख के बैठ गए और ठंडे करके खाए ना। तो मैंने कहा मैंने भी अपने बचपन में ऐसे ही खाए, लेकिन अब आके ना ऐसा लगता है कि जी अच्छा, वो मुझे उस टाइम पे लगता था कि नहीं, ये जो क्यूब्स में काट के मैंगो खाते हैं ना, इसका कोई मज़ा नहीं। और यकीन माने अब भी ऐसे ही है, हम अब आके हम भी करते हैं ऐसा कि क्यूब्स में काट लिया, कांटे के साथ खा लिया, और बच्चे जो हैं वो कहते हैं मैंगो कप काट दें। तो लेकिन बात यह कि जो उस तरह से मैंगो खाने का मज़ा है ना, वो जनाब ऐसा कहीं भी नहीं है। तो मैंगो खाने का जो एक्चुअल ओरिजिनल जिसे कहते हैं ना, ओरिजिनल असली मज़ा जो है ना, वो इसी तरह से ही है कि आपको पता चले कि आपने मैंगो खाया, आपके कपड़ों को पता चले, आपके हाथों को पता चले, आपके मुंह को पता चले कि ये मैंगो खाया जी, मैंगो। और मैंगो जो है ना वो एक आधा नहीं होता, मैंगो होता है फिर ढेर सारे होते हैं, और फिर मैंगो ही होते हैं। मैंगो के साथ आप किसी और फ्रूट को खाएंगे ना, तो मैंगो का मज़ा ख़राब हो जाएगा।

ऑलराइट जी, आप लोग भी कॉल्स कर सकते हैं 04111111 पर कॉल कर सकते हैं. ऑफर कॉल्स का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ जी फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं, fizz.com/fmlahore के पेज पे आपने जाना है. पोस्ट अपडेट लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इस ह्यूमिडिटी के मौसम में, इस हब्स के मौसम में जो है ना, आप कैसे डील करते हैं, क्या आपके पास तरीकेकार है और किस तरह से जो है ना आपको कोई ऐसी, कोई ऐसा मशरूब आप पीते हैं, कोई ऐसा जो है ना कुछ खाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं अब जो है ना थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा आपको जो गर्मी का एहसास है ना वो थोड़ा कम हो जाता है. बट एनीवेज जी, मैंने आप लोग को अपना तो बता दिया, आप लोग मुझे अपना बता सकते हैं जी कि क्या ऐसा है जो आपको खाने में पसंद है और स्पेशली जो है ना, या कोई इस तरह की कोई आप रेसिपी, कोई टोटका जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरह से जो ये जुलाई वाली जो हब्स है ना, इसको जो है आप बियर कर सके, इसको किसी तरह से जो है ना आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को अच्छा फील करा सके. एनीवेज जी, हम बात कर रहे हैं, एक दो चीज़ें होती हैं. एक होता है कि आपको ना कहना आना चाहिए, वो तो हमें तकरीबन आता है ना, तकरीबन आते ही है ना, कहते हैं हम, लेकिन ना सुनना आना जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ना कहना तो अटेम्प्ट्स आता है कि हम हर किसी को जो है ना इनकार कर देते हैं और अच्छा भी होता है. समटाइम्स हम बाउंड्री की बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं अपने राइट्स की बात करते हैं. ऐसे में ज़िंदगी आसान बनाने के लिए ना दो चीज़ें होती हैं जी, दो अहम स्किल होते हैं. एक तो ये है कि आपको ना कहना आना चाहिए और दूसरा ये कि आपको ना सुनना भी आना चाहिए. तो अगर कोई आपको इनकार कर रहा है तो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए, इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि आप ना सुन भी सकें. अच्छा जी, अब होता पता क्या है कि हम में से अक्सर लोग जो है ना, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्किल सीख लेते हैं, या तो ना कहना में आ जाता है या फिर ना सुनना में आ जाता है, लेकिन जो दूसरी साइड है ना वो हम नहीं सीख पाते. अब उसमें होता क्या है कि देखिए, अगर आप इनकार करना नहीं ना सीखते तो आप अपनी ज़िंदगी जो है ना उस पर से इख्तियार खो देते हैं. देखिए, अगर आपको इनकार करना नहीं आता, आपको आप अपनी वैल्यूज़ को जैसे कहते हैं ना पामाल कर देना और आप दूसरों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपसे अब नाग नहीं कहा जा रहा, किसी ने आपको कोई काम कह दिया, आप अंदर ही अंदर तो कह रहे हैं कि इसको एहसास करना चाहिए कि मैं ओवरबर्डनाइज हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, लेकिन आप ना नहीं कह पा रहे.

इसी तरह से जी होता क्या है कि अदर साइड जो है ना, कि अगर आपको ना सुनने का सलीका नहीं ना आता तो भी बड़े मुश्किल है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अपनी और अपने इर्द गिर्द वालों की जो है ना ज़िंदगी आप मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि आपको ना सुनने की आदत ही नहीं है, आपको ना सुनना ही नहीं आता। और आप फिर कहते हैं, आप फिर अपने आप में भी फील करते हैं कि मुझे ना कह दिया, मुझे ना कह दिया। आपको उसके साथ कॉप करना नहीं आता, आपको टॉलरेट करना नहीं आता। आप समझ ही नहीं पाते कि अच्छा मुझे इनकार कर दिया, मैंने इसे ये काम कहा था, इसे तो मुझे इनकार कर दिया। और जब उसने इनकार कर दिया तो आपको पॉजिटिवली बड़े दिल के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ़ कि आप अगले इंसान के बारे में कोई इमेज क्रिएट करें या आप ऐसा सोचें कि इसने मेरे ऐसा क्यों किया, या कल को आपको उससे जो है ना वो किसी भी किस्म की जो है ना नफरत हो जाए या कोई भी आपकी टर्म्स ख़राब हो। समटाइम्स ना दूसरी की तरफ से भी आ सकता है, समटाइम्स ना आप भी कह सकते हैं, आपके पास भी राइट है, सामने वाले के पास भी राइट है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है।

अच्छा एक चीज़ होती है कि ना लोग क्या कहेंगे, ये खौफ तो हमारे अंदर रहता ही है, हमने ये सीखा है और कहीं ना कहीं हमारे माशरे में भी हमने इस चीज़ को देखा है कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ हमारे अंदर इनबिल्ड हो गई है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगर हम किसी को ना कहेंगे तो उसकी वजह से कहीं ऐसा ना लगे कि हम जो है ना हमारा इखलाक अच्छा नहीं है या फिर हम बद इखलाकी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप लोग क्या कहेंगे खौफ से जो है ना आप अपनी ज़िंदगी का जो एक इत्तदाल होता है ना, जो आपका एक बैलेंस होता है लाइफ का, आप उसको ख़राब कर दें। जबकि बहुत सारी जगहों पे जो है ना कहना ही इखलाक होता है, या कभी कभी तो लाजिम हो जाता है, कभी कभी आपको समझना पड़ता है कि आपके ज़िम्मे अगर 10 काम है और किसी ने आपके ज़िम्मे जो है वो 11वां काम भी लगा दिया है और बाद में आप कुड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसको एहसास करना चाहिए हमारा, तो गलती आपकी है। याद रखें कि लोग तब तक आपकी इज्जत नहीं करते जब तक आप खुद अपनी इज्जत ना करवाएं। और ये तो बड़ी मशहूर बात है ना, एक कॉमन हम सुनते हैं कि लोग आपकी इज्जत तभी करते हैं जब आप अपनी इज्जत करवाते हैं। अगर आप अपनी इज्जत नहीं कराते तो लोग भी आपकी इज्जत नहीं करते।

होता यही है कि जी आपको हमेशा जो है ना बोल कर बताना पड़ता है, हम हमेशा ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान इतना साफ दिल होता है और आपसे इनकार नहीं किया जाता, और आप कहते हैं कि नहीं जी लोग जो हैं वो खुद समझेंगे कि हम पे क्या गुजर रही है, या हम ओवरबर्डनाइज हैं, या हमारे साथ ये हो रहा है, या किसी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है और अब हम दोबारा ये काम नहीं करना चाहते, या अब हम जो हैं वो इनकार करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कह पाते, नहीं कर पाते। लेकिन लेकिन यकीन माने ये एक रियलिटी है कि आपको हमेशा मुँह से बोल कर बताना पड़ता है कि वट यू आर गोइंग थ्रू, कि आप कैसे हैं, कौन सा काम कर सकते हैं और किसी के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब आपको अपने मुंह से बोल कर बताना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई अंडरस्टैंड करेगा या लोग समझ आएंगे, तो ऐसा बहुत बहुत बहुत मैं कहूँ अगर बहुत बहुत कम होता है, तो ये बात सच है कि ऐसा बहुत कम होता है कि आपको कोई इसी तरह से समझ ले कि आप ओवरबर्डनाइज हैं, या ये बात आपको बुरी लग रही है, या ये काम आप नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते।

0: बैठे हूँ।
1: तो बिल्कुल जी, बगैर रूड हुए, बगैर कोई इखलाक को गिराए हुए, कोई बद इखलाकी किए हुए, आप जो है वो इनकार कर सकते हैं और ये स्किल आप सीख सकते हैं। ये एक ऐसा स्किल है जो हमारी अक्सरियत जो है वो नहीं सीखती, लेकिन इसको सीखना चाहिए। और इसी स्किल के साथ साथ हम थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि जब सामने वाला आपको इनकार कहता है, किसी वजह से मना करता है, तो आपको भी बड़े दिल के साथ जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि सामने से अगर इनकार आया तो अब मैंने क्या करना है। ऐसा नहीं है कि वो इनकार जो है वो किसी ज़ाती वजह से आया या कोई ज़ाती नफ़रत की वजह से आया, हो सकता है उसके पीछे भी वजह हो। जैसे आपके पास वजूहात हैं इनकार करने की, सामने वाले के पास भी वजूहात हो सकती हैं इनकार करने की। ऑलराइट जी, इस पर ज़रा सोचिएगा कि क्या आप वाकई ना कर पाते हैं, या ना सुनने की ताकत जो है ना, ना सुनने का जो एक हौसला होता है, जो एक टॉलरेंस होती है, या जो एक स्किल होता है, वो आपके अंदर है, और ना कहने का स्किल आपके अंदर है। तो इस ट्रैक के बाद इस पे बात करते हैं, ठीक है।

ऑलराइट जी, ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाइव ऑन लाहौर स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को, मेरा आपका साथ रहेगा। ठीक ठीक ठीक जी, 8 बजे तक इट 6:45 PM ऑन द डायल। और हम बात कर रहे थे कि दो चीज़ें होती हैं, मतलब दो एक स्किल्स होते हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सीखने आने चाहिए। एक तो ये है कि आपको ना कहना आना चाहिए और दूसरी तरफ आपको ना सुनना भी आना चाहिए। सो इसी पे हम बात कर रहे थे। और अभी मैं लास्टली जो मेंशन कर रही थी बात, वो यही थी कि अगर आप इनकार करते हैं, अगर तो आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो काम करें। लेकिन अगर नहीं होता तो आप उसको तरीके से जो है ना समझा सकते हैं। आप इनकार का सबब नहीं भी बताना चाहते तो आप आराम से नरमी से जो है ना ये बात कह सकते हैं कि अगर मैं कर सकती तो ज़रूर करती। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना, उससे सामने वाले इंसान को बुरा भी नहीं लगता और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप क्यों नहीं ये काम कर पा रहे या आपके इनकार की वजह क्या है। सो अगर आप आराम से ये बात कह सकते हैं कि अगर मैं कर सकती तो ज़रूर कर देती, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है या नहीं हो सकेगा, उम्मीद है आप समझेंगे। सो इस तरह की अगर आप वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो सामने वाला आई गेस इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता और तब जो है ना कोई भी जो है ना आपकी बात को उस तरह से बुरा फील नहीं करेगा। लेकिन इसी तरह से सेम अगर मैं बात करूं कि आपको भी यहाँ पर जो है वो इनकार सुनने के लिए जो है ना अपने अंदर टॉलरेंस एक्सेप्टेंस पैदा करनी पड़ेगी, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं कि यहीं पर जो है ना हमें भी सीखना है कि जब कोई हमें इनकार करेगा ना, तो हमने भी उसको पर्सनल नहीं लेना। हमें ये समझना है कि ज़रूर उसको कोई ना कोई मसला होगा तभी उसने इनकार किया है। ये नहीं समझना कि देखो जी कितना रूड है, कितनी रूडली इसने मुझे इनकार कर दिया, और उस इनकार को जो है ना दिल पे नहीं लेना। सो दिल पे ना लेने के बजाय जो है ना नॉर्मल, उस इनकार को नॉर्मल समझने की आदत जो है ना वो डालें और खुद को कहें कि कोई बात नहीं, अगर कोई मदद नहीं कर सका तो इट्स ओके। अपने आप को समझाना जो है ना वो बहुत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।

तो बिल्कुल जी, अगर आपको लगता है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में ये स्किल सीखा है कि किस तरह से आप किसी को ना कर सकते हैं और किसी तरह से आप जो है वो सामने वाले का इनकार भी जो है वो सुन सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी बाउंड्रीज का भी ख्याल रख सकते हैं और सामने वाले को भी ये राइट दे सकते हैं कि वो भी आपको कभी ना कभी जो है वो इनकार कर सकता है और कभी ना कभी आपको ना सुनना पड़ेगा, तो इस चीज़ का हौसला, इस चीज़ की टॉलरेंस और इस चीज़ की एक्सेप्टेंस जो है वो अपने अंदर पैदा करना बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून से गुजरे ना और आपको कोई चीज़ बुरी ना लगे, आप छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें। तो ये दो चीज़ें जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जी, आप लोग के कुछ कमेंट्स भी शामिल कर लेते हैं। fizz.com/F1 लाहौर के पेज पे आपने जी कमेंट्स किए हैं, सो कुछ कमेंट्स जो हैं वो अभी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ कौन कौन मौजूद है।

जी रमजान गुजर हमारे साथ मौजूद है, गुड इवनिंग कहते हैं, गुड इवनिंग नहीं हमारे साथ मौजूद है, अभी जी ऑफ द एयर भी हमारे साथ मौजूद थे, सलाम कहते हैं जी। और इन्होंने अभी जो है वो ऑफ द एयर जब मैं बात कर रही थी कि इस ह्यूमिडिटी के मौसम में जो है ना वो क्या आपको लगता है अच्छा खाना, और मतलब क्या दिल करता है और किस तरह से आपको लगता है कि नहीं ये मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ओवरकम हो जाए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, तो क्या ऐसा कोई मतलब खाने पीने में हम ऑब्वियसली हम थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाते हैं जब गर्मी ज़्यादा होती है और हम सोचते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा, मतलब मेरा जो दिल करेगा ना मैंने वो खाना है। तो मैंने कहा आप मन मौजी है इसका मतलब कि आपका कहते हैं अगर मेरा अभी दिल करेगा ना कि मैंने फ़िश खानी है तो मैं नहीं देखूँगा कितनी गर्मी है, मैंने खा लेनी है। होता है ना क्रेविंग्स होती हैं आपकी, समटाइम्स आप नहीं कंट्रोल कर पाते, समटाइम्स आपका दिल करता है कि नहीं बस ये खाना है तो ये खाना है। इसी तरह से इनका जी सर्दियों में भी यही हिसाब है, इन्होंने कहा कि जी सर्दियों में भी चाहे लोग जितना मर्जी कहें कि जी सर्दियों में जो है ना गर्म चीज़ें खानी चाहिए, तो मैं जो है ना उसके ऑपोजिट अगर दिल कर रहा तो मैंने ठंडी चीज़ें भी खा लेनी है। और उसका एक अच्छी बात इन्होंने जो की वो ये की कि इनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और आपको इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

दर्द बहुत कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर।

चाहूं मैं तेरा बस साथ। ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाइव इन लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को, मेरा आपका साथ रहेगा टिक टिक टिक जी 8 बजे तक। 7:04 हो गए हैं जी, टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और टॉपिक बड़ा मजे का है और ये ऐसी चीज है जो कि हम सबके साथ होती है। ये मोस्टली हम देखते हैं कोई भी प्लान होता है, कोई भी इवेंट होता है, कोई शादी का इवेंट होता है, कोई ट्रिप होता है, तो कोई एक बंदा होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने हर चीज़ मैनेज करनी है और एवरीथिंग जो है ना, जिसे कहते हैं ना, बुकिंग से लेके रास्ता, ट्रिप की डेस्टिनेशन, हर चीज़ उस इंसान के ऊपर होती है। और फिर वो इंसान कभी कभी मैं, आप, हम लोग भी होते हैं और कभी कभी हम उनमें से भी होते हैं कि जो बस साथ जा रहे होते हैं, जिनको पता होता है, लेकिन एंड पे क्या होता है कि जी जिसकी जिम्मेदारी होती है ना, अगर तो उसने कुछ कर दिया और वो अच्छा निकला है तो उसकी तारीफ़ें हो जाएंगी, लेकिन अगर उसने जो आपके लिए बुक किया या जो प्लान किया उसमें कुछ ना कुछ मसला आ गया ना, तो वो बेचारा जो है ना, वो सही उसके साथ बुरा होता है, फिर उसको सब कहते हैं कि जी देखो ये नहीं अच्छा था, ये ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से शादियों में भी ऐसे ही होता है कि घर का कोई एक बंदा होता है जिसके ऊपर ना सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और उसको ही कहा जाता है कि जी ये तुमने करना है, ये तुमने मैनेज करना है, ये सारा कुछ, मतलब वो मैनेज कर रहा था। तो आपका जो रोल है अपने घर में या अपने दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में, वो मैनेजमेंट वाला है, मतलब आप मैनेज करते हैं चीज़ों को, आप प्लान करते हैं, आपके जिम्मे होता है कि आपने ये सारा कुछ जो है ना वो देखना है, सारे मामला तो आपने देखने हैं, या फिर अदर एंड पे जो है ना हम ये कह सकते हैं कि आपका रोल वो वाला होता है कि बस आपने जो है ना वो तैयार होना है, आपने पैकिंग करनी है और आपने जाना है बस, और उसके बाद आपने कहना जी ये नहीं अच्छा हुआ, वो नहीं अच्छा हुआ। तो आप किस वाली साइड पे जो है ना वो ज़्यादा फॉल करते हैं? आप प्लानिंग करते हैं, आप सब कुछ अरेंज करते हैं, या फिर आप बस इंजॉय करते हैं, आप ट्रिप पे जाते हैं, आप बस इवेंट पे जाते हैं और आपको सब कुछ जो है ना प्लान्ड मिलता है?

और मैं जी इस पर ज़रा सोच रहे हैं अभी, क्योंकि बड़ा ट्रिप्स जा रहे हैं अभी, बहुत सारे लोग नॉर्थ जा रहे हैं, छुट्टियां हैं, बच्चों को इन्जॉय कर रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी टेंशन होती है, बड़ा एक जैसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये वाली, कि आपने मैनेज करनी है चीज़ों को, आप जो है ना एक अजीब सी एक टेंशन भी होती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, होटल्स अच्छे मिल जाएँ, सफ़र जो है वो अच्छा रहे और चीज़ें मैनेज हो जाएँ, डेज मैनेज हो जाएँ, आप पूरा जो है ना एक पूरा बकायदा आप मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को। इसी तरह से शादियों पे भी, इवेंट्स पे भी, फेस्टिवल्स पे भी, घर में कोई दावत है तो उस पे भी एक इंसान होता है जिसको जो कि टेंशन लेता है, जिसको टेंशन होती है और जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें अच्छा ये भी एक स्किल्स होते हैं, ये भी एक लर्निंग पॉइंट है और ये भी आपके अंदर इनबिल्ड होता है कि आप वाकई इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ वो भी होते हैं जो कि कहते हैं हमसे नहीं मैनेज हो रहा, बस हम जाएंगे और हम जाके जो है ना इन्जॉय करेंगे, आप हमें जो है ना वो सारा कुछ कर दें। तो आपका रोल किस तरफ है ये आप मुझे बता सकते हैं 04111111 पर। लाइव कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करने लगे हैं, इसके साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। और हाँ जी, फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं, facebook.com/fonlahore के पेज पर आपने जाना है, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपका रोल कौन सा वाला है, मैनेजमेंट वाला है या बस जाके इन्जॉय करने वाला है।

0: ऑनर जी पहले कॉलर है हमारे साथ, लेट्स सी कौन है हमारे साथ जी। 04221000 पर हेलो, अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद।
0: खुश आमदीद, कौन है, कहाँ से बात कर रहे जी?
1: जी बंदा रजा चौधरी बात कर रहा हूँ, कॉलर
0: जी। रजा कैसे हैं आप?
1: हाँ अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, आप ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं उकाड़ा में कैसा मौसम है?
1: बहुत ज़्यादा गर्मी।
0: ओहो, वहाँ भी ऐसे ही हब्स है?
1: बहुत हब्स बहुत है, क्योंकि मैं 4-5 दिन से इधर आया हूँ, तो मेरे वालद की तबीयत नहीं ठीक थी।
0: अच्छा, अल्लाह रहम करे।
1: तो अभी आया, गर्मी बहुत है।
0: अच्छा, गर्मी बहुत है वहाँ पे?
1: हाँ, तो अल्लाह पता गया। अभी मैं छोटी सी नहर है उधर खड़ा हूँ, तो लाइट चलेगी।
0: अच्छा,
1: मैं उधर आके, मैं कहा चलो उधर आके, मैं क्या करता हूँ।
0: ठीक है, तो आप थोड़ी देर सुकून लेने के लिए जो है ना उधर खड़े हुए हैं।
1: जी जी
0: ठीक
1: है। देखो, मैं एक शादी पे, मुझे जिम्मेदारी दी गई नेंदा लिखने की, नेंदा भी पैसे नहीं लिखे जाते।
0: जी जी जी जी जी जी, वो जो एक लेन देन होता है, वो जो
1: लेन देन होता है उसके पंजाबी
0: क्या कहते हैं, इसको नेंदरा कहते हैं, क्या कहते हैं?
1: नेंदरा, नेंदरा भी कहते हैं, नेंदा भी कहते हैं।
0: अच्छा,
1: तो मैं क्या सारे दिन की उनके जी, ये जो मुंडा है ना, ये हमें पसंद है, ये हमें पसंद क्या है, जिम्मेदारी कबूल एक्सेप्ट करता है।
0: अच्छा,
1: तो बैठ गया अपने, उन्होंने मुझे एक बुक दे दी, पेंसिल दे दी, तो एक छोटा सा परात होती है, उसमें ना वो चावल वगैरह चीनी मिक्स कर डाल देते हैं, उसमें पैसे रखने हैं अपने सब।
0: ठीक है,
1: हर बंदे का अपने गांव का अपना अपना रिवाज है।
0: अच्छा,
1: तो बैठ गया, इतनी अच्छी मैंने अपनी कोशिश की चंगी चंगी राइटिंग करें, कि पता चले आज जाते अब स्कूल पे बना पेपर ही देता, बड़े खुशकती वाले।
0: ठीक है ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ।
1: हाँ, राइटिंग वैसे ही ठीक है।
0: ठीक है,
1: तो वो जो दो जो मुझे जानते थे वो कहता है, ये देखो अब इसका काम देखो, ये नींदा ऐसे लिख रहा है जैसे किसी को कोई खत लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है। मैं कहा यार, ये इतनी यादगारी। तो लेकिन जो जो लड़के का ना ताया था ना,
0: अच्छा,
1: उसने क्या लाओ की जरूरत है गंद मारन की, उन्हें पैसे फड़ी चलो, लोगों का ले चलो, लिखी चलो, बस ठीक है।
0: अच्छा,
1: लड़का जो है वो कुछ चार्ट लिख रहा है,
0: अच्छा,
1: किसी इश्तिहार देना है। मैं कहा लाया बाबा, तू सारी कीती कताई मेरे कुछ पाती है। मैं जी, तो मैं तो ये जुम्मेदारी लेता ही नहीं हूँ, मैं तो जुम्मेदारी लेता ही नहीं हूँ ये।
0: अच्छा,
1: वो मेरी फैमिली वाले कहते हैं कितने सारा बंदा परी कैसे बता दिया आप लोगों ने।
0: हाँ,
1: तो इसलिए ना जितना मर्जी अच्छा कर ले, अगला बंदा की किया तो फिर बंदा दिल टूटे टूटे हो जाता है।
0: हाँ, ये
1: तो
0: बात
1: फिर
0: तो
1: मैंने हाथ खड़े, आप मेरे हाथ खड़े हैं, आप कहते हैं कि क्या भी नहीं, मैं यार क्योंकि हम जी काम आते नहीं कॉलिंग वाला, ये बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है।
0: सही बात है, जब आपको बार बार ऐसे कहा जाए ना, फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता।
1: मैं ना जी ना, और की जिम्मेदारी बता दो, ये जिम्मेदारी आप नहीं लेनी, बस हाथ खड़े। तो बाकी उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा, जिन्होंने मेरे बाल लिए 2-3 दिन से दुआई कर रहे हैं।
0: अच्छी बात है जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे जल्द से
1: जल्द, खुशी बचते हैं, अच्छी सेहत के लिए।
0: आमीन, बहुत शुक्रिया जी,
1: अल्लाह
0: हाफिज़। ऑल राइट जी, रजा चौधरी मेरे साथ मौजूद थे। और ऐसा भी होता है, जैसे अभी मैं बात कर रही थी ना, कि शादियों पे भी कोई एक बंदा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ ख़राब हो जाए ना, तो वो भी सारा इल्ज़ाम आप पे आ जाता है। और इसी तरह से जब आप ट्रिप्स वगैरह का प्लान कर रहे होते हैं, तो भी एक बंदा होता है जो कि ना बड़ा कॉन्शियस होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको टेंशन होती है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना एक्यूरेट रहें। और स्पेशली जब आप दूसरों के लिए अरेंज कर रहे होते हैं ना कोई भी चीज़, तो आपकी ज़्यादा कोशिश होती है कि कोई, जिसे कहते हैं लामा ना आ जाए। तो बेसिकली जो है ना, कोई इस तरह का लामा ना आ जाए, इसके लिए जो है ना आप कहते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि आप हर तरह से जो है ना फुलफ़िल कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके। तो आपका रोल जो है वो किस में है? आप लोग जो है वो मैनेजमेंट में ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर आप जाते हैं इंजॉय करते हैं, आपसे नहीं ये सरदर्द ली जाती, आप कहते नहीं हमें कोई कर दे, हम इंजॉय करेंगे, हम जाएंगे हम ट्रिप पर और हम घूमें फिरेंगे। एनी वेज जी, अभी आजकल लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, और उस पर मैं एक छोटा सा जो मैसेज देना चाह रही हूँ वो ये है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब भी आप जा रहे हैं नॉर्थ और ट्रिप्स पे जा रहे हैं, तो गंदगी जो है ना वो आपने वहाँ पे नहीं फैलानी, आपने अपना कूड़ा फेंक कर आना है, साफ करके आना है, और वहाँ पे नहीं छोड़ के आना। और जी, एक ट्रैक जो कि हम अक्सर ही सुना करते थे, तो अभी जब पहाड़ों की बात हो रही है, नॉर्थ की बात हो रही है, ट्रिप्स की बात हो रही है, और अगर आप ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं अभी, तो सेफ्टी को ज़रूर इंश्योर कीजिएगा। रास्ता देख के जाएं, मौसम देख कर जाएं, हालात देख कर जाएं, और किसी भी किस्म की जहाँ पे अभी, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया है, तो हर किस्म की जो है ना ऐसी कोई भी आपने एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी जिसमें किसी किस्म का ख़तरा हो, क्योंकि दरिया, नदी, नाले, हर जगह पर अभी जो है ना बारिशों के बायस और बर्फ़ बर्फ़ पिघलने के बायस, ग्लेशियर पिघलने के बायस जो है वो तुगियानी आ चुकी है, तो ऐसे में एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस ट्रैक को इन्जॉय करें, और अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो प्लान को बनाते हुए इस ट्रैक को इन्जॉय करें, ठीक है।

0: ऑनर जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं बात कर रही थी आप लोग से कि आजकल क्योंकि ट्रिप्स भी प्लान हो रहे हैं, इवेंट्स भी आते हैं, शादियां भी होती है, तो कोई एक बंदा घर का जो है ना, एक फर्ज जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसका काम होता है मैनेजमेंट करना। और ये भी एक स्किल है, अगर आप में से किसी को ये हुनर आता है तो ही आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, और तो ही जिसे कहते हैं ना आप ये सरदर्द ले सकते हैं। सरदर्द भी कहूँ तो ठीक है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है टाइम्स, स्पेशली अगर आप खुद जा रहे हो तो फिर भी आप थोड़ा बहुत हालात और वाकयात के लिहाज से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, प्लान को चेंज कर सकते हैं। बट समटाइम्स जब आप किसी और के लिए प्लान कर रहे होते हैं ना, और आप खुद वहाँ नहीं मौजूद होते, उस मौके पे नहीं मौजूद होते, उस सिचुएशन से आप नहीं गुजर रहे होते हैं, और आप फ़ोन पे राब्तों पे होते हैं, अब तो फ़ोन के थ्रू जो है वो पूरी पूरी कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, पूरी प्लानिंग हो रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग हो रही होती है। सो एनीवेज जी, उस टाइम पे जो आपके ऊपर प्रेशर होता है ना, आपके लिए मुश्किल होती है, और फिर सबकी उम्मीदें भी आपके साथ जुड़ी होती हैं, तो आपका रोल जो है ना वो कौन सा वाला है? आपका रोल जो है वो मैनेजमेंट वाला है, या आपका रोल वो वाला है कि बस नहीं, हमें कोई प्लान कर दें, हमें कोई मैनेज कर दें, हमें कोई चीज़ें सारी अरेंज कर दें, और हम बस जाएंगे, हम बस इंजॉय करेंगे? तो आपका रोल कौन सा जी, इस पर बात करें हम। आपने मुझे बताना है, 04221111 पर कॉल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, fizz.com/f11lahore के पेज पर जाना, अपने पोस्ट अपडेट लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और जी, लेट्स सी नेक्स्ट लाइव कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, इफ्तिखार अमन बावल नगर से।
0: जी इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप?
1: शुक्र है अल्लाह पाक का, आप सुनाओ, आप जी कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में।
0: बहुत शुक्रिया जी,
1: मेरी तरफ से सबको सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि आप करते हैं कोई इस तरह का प्लानिंग वाला, मैनेजमेंट वाला काम करते हैं आप? थोड़ा सा कभी कहीं जाना हो, कहीं सारी जिम्मेदारी आप पे होती है, या बस जाने की उसमें होते हैं कि बस मैंने जाना है?
1: मुझे पर होती है जिम्मेदारी, प्लान बनाना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: मुझे हर चीज देखनी पड़ती है, हिसाब किताब देखना पड़ता है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: मनी का, कपड़े का, जूते का, शादी मिसाल के तौर पर शादी पे जाना तो बजट बनाना पड़ता है।
0: ठीक है, तो मतलब आप जिम्मेदारी ये वाली उठाते हैं, आप में है ये स्किल, आप मैनेज कर लेते हैं, ये सारी चीजें संभाल लेते हैं।
1: जी जी बिल्कुल सर।
0: ठीक है ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, ख्याल रखिएगा, अल्लाह
1: हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट जी, इफ्तिखार मेरे साथ मौजूद थे, और इन्होंने कहा कि हाँ जी, ये जो है ना बजट बनाने का, वो बजट भी, वैसे आपको पता कि बजट भी एक बड़ा मुश्किल काम है, तो इस तरह के छोटी छोटी स्किल्स जो है ना, ये बड़े मैटर करते हैं। खैर, ये इवेंट मैनेज करना, ये कोई ट्रिप प्लान करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये स्किल्स आने भी चाहिए। ये थोड़ी सी सरदर्द लेनी आपको आनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आनी चाहिए, अच्छी होती है। और इसको जो है ना आइटम्स आप इंजॉय करते हैं, और इंजॉय करने से ज़्यादा आप इससे सीखते बहुत कुछ हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा जो है ना वो देखना चाहिए।

0: मैं झूठा हुण की करना हाँ तेरे नाल ही मैं बैठा हुण की करना
1: और जी अनदर ट्रैक विद अनदर कॉलर लेट्स सी कॉलर पे कौन है हमारे साथ कॉल कौन कर रहे हैं जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: क्या हाल है आपकी तबीयत मिजाज ठीक है आपका
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक कौन कहाँ से बात कर रहे हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिर बात कर रहा हूँ कविता से क्या हाल है आपके
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और इतने अरसे बाद आपकी कॉल आई है
2: बस आपने इतना गलत टाइमिंग शो रखा हुआ घूमने फिर क्या है इसमें अभी देखो दो टाइम नमाज पढ़ने का होता है
1: ठीक है
2: हमारा घूमने का टाइम होता है
1: घूमने का टाइम घूमने कहाँ जाते हैं आप इस टाइम पे
2: मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट वगैरह
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा फ्रेंड्स टाइम होता है आपका ठीक है
2: आपने इस जगह पे शो रखा हुआ है
1: ओहो चले कोई बात
2: टाइमिंग में न तो खवातीन फ्री है न लड़के फ्री है न लड़के न बुजुर्ग कोई भी फ्री नहीं खवातीन सिस्टम के चलो में मसरूफ है
1: हाँ बस मैं ही फ्री हूँ मैं शो करने आ जाती हूँ उस टाइम में ठीक है जी अच्छा मुझे बताया आप आपका कौन सा वाला रोल होता है आप मैनेज करते हैं चीजों को प्लान करते हैं
2: आप ही जाहिर से बात है अगर कोई काम प्लान नहीं करे मैनेज नहीं करे आप काम वहाँ पे जाएगा आप नहीं कर सकते हो
1: अच्छा
2: पहले से आपके जहन में एक आईडिया वगैरह बनाएगा प्लान बनाएगा आप वहाँ पे फिर अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो
1: नहीं जैसे अभी आप दोस्तों के साथ भी अभी आपका फ्रेंड्स टाइम है तो कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना हो तो सारी सरदर्द आपकी होती है कि आपने प्लान करना है कहाँ जाना है किस टाइम निकलना है
2: नहीं वो कोई दोस्त वगैरह मामलों पहले मशवरा कर लेते
1: अच्छा
2: उधर जाएगा फिर बातचीत होगी फिर एक बात करने का हाल निकलता है फिर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं
1: ठीक है ठीक है अच्छा मिलजुल के कर लेते हैं इसका मतलब
2: हाँ ना
1: ठीक है जी
2: कोई हमारे जब पर्सनल काम होता है मैं खुद अपने आप से कर लेता हूँ जब ज्यादा दोस्त वगैरह फिर हम लोग मशवरे वगैरह कर लेते हैं
1: ठीक है ठीक है और मुझे बताएं क्वेटा में मौसम कैसा है
2: क्वेटा में बहुत ज्यादा गर्मी है
1: बहुत ज्यादा गर्मी
2: लाहौर में भी गर्मी है क्वेटा में भी गर्मी अभी बंदा जाएगा
1: हाँ बंदा जाए फिर कहाँ जा सकते बंदा क्वेटा में भी गर्मी है देखिए हम लाहौर वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे क्वेटा में सर्दी होगी मतलब सर्दी नहीं चलो मौसम अच्छा होगा
2: लाहौर की मुनासिबत से फिर भी क्वेटा बहुत बेहतर है
1: बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक
2: क्योंकि वहाँ पे पसीना बहुत ज्यादा या कि तकरीबन 5-6 बजे के बाद मौसम बहुत प्यारा होता है
1: अच्छा
2: और सुबह 10 बजे तक बहुत प्यारा मौसम होता है
1: ठीक है इसका मतलब अभी मौसम अच्छा है अभी इस टाइम पे थोड़ा बेहतर है मौसम
2: बिल्कुल अभी एक बात मैं बता तकरीबन ये वीक नहीं
1: जी जी
2: अगले वीक आज फिर दूसरे फिर हम गए थे लोर लाइन वहाँ पे बारिश हो गए
1: अच्छा
2: सर्दी लग रहा था कंबल के बगैर आपका हम कंबल में सोए
1: चलो जी अच्छी बात है जी
2: अगर बारिश हो जाए यकीन करे इस तरह लग रहा है कि जैसे पंजाब में जनवरी का मौसम है
1: वही मतलब ठंड आ जाती है ना बारिश हो गई तो फिर
2: कमरे के अंदर सो जाता है
1: ठीक है
2: नहीं चलाता है
1: ठीक है अदरवाइज जो है वो गर्मी होती है
2: बिल्कुल मिल्क टी भी तैयार है
1: ठीक है चले जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला वाला खेल कॉल करने का ख्याल रखिएगा
2: आपके लिए आपका हमेशा खुश रखा वीक में दो तीन शो किया
1: ठीक है जी ओके जी
2: अभी तक मुझे याद है जी जी
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अब कुछ जुम्मे की मसरूफियत की वजह से जो है ना इस टाइम पे कर रही हूँ चले जी बहुत शुक्रिया जी ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ और राइट जी अलहमदुलिल्लाह मला खेल हमारे साथ मौजूद 4222111 पर जी एक और कॉलर लेट सी जी देखते हैं जी कौन होते हैं अगले कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: जी अस्सलाम वालेकुम आपे
1: वालेकुम अस्सलाम कौन कैसे बात कर रहे हैं
3: जी मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल हमीद फरुखाबाद गाँव श्याम से आपकी शुक्र है आज हमारे डबल कॉल लग गया ना कभी एक भी कॉल नहीं
1: चले जी चले जी अच्छी बात है
3: मैं तो बड़ा खुश हूँ सही बात पे
1: बिल्कुल
3: रश बड़ा आता है इधर
1: चले जी कॉल मिल गई आपकी
3: अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत बढ़िया अभी देखो अभी कोई भी काम करना हो ना साढ़े ना कमेटी के चार
1: आप जिम्मेदारी ले लेते हैं आप फैसला भी अच्छा कर लेते हैं
3: इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्योंकि जेडी जिम्मेदारी है ना ये निभानी चाहिए जब कोई एक बंदे सुट दे ना फिर ओनू ईमानदारी ना ईमानदारी का काम करना चाहिए
1: बिल्कुल ठीक है, और जिम्मेदारी भी बड़ी है ना।
3: चले
1: जी इंशाल्लाह मिल जाएगी कॉल, मिल जाएगी।
3: रमजान बिजर भी आए गए, सारे प्यारे साधे सारे हो गए।
1: मौजूद है, और ये भी बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है कि आपको जो है ना वो इस तरह की किसी उसमें ऐड किया जाए कि चार लोग या पांच लोग का कोई हो, और कम्युनिटी के फैसले या जिस तरह से आपके इलाके के फैसले हैं वो आप कर रहे हैं, और वो जिम्मेदारी आपके ऊपर हो।

0: All right, जी, हम बात कर रहे हैं कि आपकी स्किल्स किस तरफ ज्यादा है. वैसे एक तरफ तो मैं स्किल्स कह सकती हूँ, दूसरी तरफ मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही. दूसरी तरफ मैं क्या कहूँ कि आप सिर्फ जाकर जो है ना इंजॉय करते हैं, आपको सब कुछ प्लान मिलता है, सब कुछ जिसे कहते हैं ना ऑल सेट, आपको वो वाली सूरत हाल जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या अपने लिए या दूसरों के लिए डिसीजन लेना, फैसले करना, ट्रिप अरेंज करना, इवेंट्स की प्लानिंग करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करना जो है वो आप पसंद करते हैं और उसको फिर आप निभाते भी हैं, क्योंकि एक स्किल है, एक हुनर है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाता है टाइम से. और इसमें हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आपको दाद मिले, हर दफ़ा आपको जो है वो अच्छा लगे और अच्छे अल्फाज में याद किया जाए. समटाइम्स जो है ना वो कोई छोटी सी चीज़ भी ख़राब हो जाए तो सबका मूड ख़राब हो जाता है और सब आपको कहने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया. और समटाइम्स जो है ना ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों में मज़ा भी आता है. तो आपका जो रोल है ना वो किस तरफ है, आप मैनेज कर सकते हैं अच्छा, या फिर आप जो है ना ये वाला साइड जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है आपकी, कि आप बस सुकून से जाएं और आप इंजॉय करें और बस कोई टेंशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके सर, आपने कुछ अरेंज नहीं करना. एनीवेज जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, लेट्स सी जी 4221111 पर कौन है जी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से आपको वेलकम, खुश आमदी जी आया नो, अहलन व सहलन, मरहबा बली करी आया नो, तब खैर अगले. ये कौन कहता है कि 130 प्लस, मैंने तो पता नहीं 200 प्लस कर दी है.
0: आपने कभी नंबर नहीं बताया मुझे, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं कि 200 प्लस भी आपने की है एक दिन में.
1: मैं आप 6:15 से सुनना स्टार्ट किया है, मतलब अच्छा. कॉल्स मिला रही हूँ. अभी मैं नमाज पढ़ के ना जाय नमाज से उठी हूँ तो मैंने दुआ की थी कि अल्लाह पाक मेरी कॉल लीजिए.
0: आपने बड़ी बड़ी दिल से दुआ मांगी है देखें.
1: कहते ना यकीन पुख्ता हो तो पहले मिल ही जाती हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: अल्लाह पाक भी साथ देता है
0: बिल्कुल.
1: और इंशाल्लाह दिल से दुआ मांगते हैं, जो भी मांगे मिलता है जरूर.
0: बिल्कुल मिलता है और देखिए आपको मिल भी गया. वो कभी कभी इंसान कहता है ना कबूलियत का वक्त होता है तो फिर इंसान अपने आप को कहता है काश मैंने कुछ और मांगा होता, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने कहा मैंने कुछ और मांगा होता.
1: अक्सर होता है, लेकिन जो चीज मैं नहीं मांगती ना वो अचानक से मिल जाती है.
0: अच्छा,
1: जो मांगती रहो नहीं मिलती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो मांगू वो फौरन से पहले मिल जाता है.
0: फौरन से पहले
1: काश मैं ये ना मांगती, मैं वो मांग लेती, लेकिन अल्लाह की रजा है.
0: बिल्कुल,
1: इसमें वो रखे शुक्र
0: है. नहीं, मैंने कहा अभी मेरे केस में ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने दुआ मांगी कि कॉल मिल जाए, कॉल मिल गई, फिर आप सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला मैं कुछ और मांग लेती.
1: नहीं, नहीं, नहीं.
0: अच्छा,
1: अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा वो अल्लाह पाक दे.
0: अच्छा, चले, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप इस चीज में क्लियर हैं कि आपको अभी जो नीड्स हैं आपकी वो सारी पूरी हैं और आप शुक्र अदा कर रही हैं अल्लाह का कि अभी अभी अल्लाह ताला आपने सब कुछ पूरा कर दिया.
1: इंशाल्लाह,
0: चले, अच्छी बात
1: है. यकीन रखना चाहिए अल्लाह.
0: बिल्कुल बिल्कुल, और पॉजिटिव रहना चाहिए.
1: हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं आगे भी पूछूं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आपको लग नहीं रहा आवाज से मेरी,
1: मुझसे पूछे मैं कैसी.
0: आप कैसी हैं?
1: खूबसूरत.
0: वो तो आप हैं, मुझे बताएं कि आप वैसे मैनेजमेंट वाली साइड पे ज्यादा हैं, कोई मैनेज करती हैं प्लान्स वगैरह ट्रिप्स को?
1: मैं खीर पकी पकाई मिल जाए ठंडी होके
0: अल्लाह
1: तो मैं खा लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं फिर मैजी के खाती
0: हूँ. इसका मतलब तुसी सर दर्द नहीं लेंदे?
1: क्या नहीं लेते?
0: मैंने कहा सर दर्द नहीं लेती आप?
1: सर दर्द नहीं लेती, लेकिन हाँ जो आप इनकार का कह रही थी ना,
0: जी जी,
1: कि आप इनकार करने का हौसला रखते हैं या इनकार सुनने का, या आप इनकार कर देते हैं,
0: जी जी.
1: तो मैं वाकई मैं ऐसे इर्द गिर्द माहौल ऐसा रखा ही नहीं.
0: अच्छा,
1: जो मुझसे कोई
0: उम्मीद रखे.
1: उम्मीद रखे? और या मैं किसी से उम्मीद रखूं?
0: अल्लाह. सही है जी, सही है ना, उम्मीद रखो. ते ना रखो.
1: एक रात पे उम्मीद रखी है बस, और ठीक पे रखती है.
0: बिल्कुल ठीक
1: है, उम्मीद नहीं रखती. जो इंसानों पे उम्मीद रखता है ना वो क्या घाटे का सौदा खाता
0: है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब आप इनकार कर भी देती हैं और इनकार सुन भी लेती हैं,
1: तो क्या
0: ऐसे ही है ना?
1: हाँ ना,
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी.
1: मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर मेरी मेरी गरीब बंदी की रिक्वेस्ट पूरी हो जाए तो.
0: बताएं.
1: मैम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऑफियर भी छोटी कॉल लिया करें और ज्यादा कॉल्स लिया करें, और ऑनियर भी छोटी कॉल्स लिया करें और ज्यादा कॉल्स लिया करें।
0: ठीक है, मैं ऑनियर का टाइम नोट करती हूँ। अब मैं ऑनियर का टाइम नोट करती हूँ, रुके
1: बुजुर्गों को
0: मैं टाइमर लगाती हूँ साथ में ना, ऑनियर कॉल्स के साथ
1: सुनने वालों को, स्पेशली स्टार जीरे को, अंकल जीरे को और अंकल हनीफ को और शमसी ग्रुप के तमाम जितने भी हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, सलामत रहे, खुश रहे,
0: बहुत शुक्रिया।
1: ओके, अल्लाह
0: अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, हमारा बेग हमारे साथ मौजूद थी। ठीक है जी, आप लोग सब आके रिक्वेस्ट करते हैं ना कि हमें बीमारी मिले, हमें बीमारी मिले, तो थोड़ा सा शॉर्ट बात आपने खुद करनी है ताकि बात जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाए। ऑलराइट जी, इनको इन्होंने बड़ा क्लियरली जो है ना, जैसे कहते हैं ना, साफ साफ कह दी कि इनको जो है पकी पकाई खीर खाने की आदत है, तो वो उसी को पसंद करती हैं, और विच इज़ वेरी ट्रू। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी भी आनी चाहिए कि आप जो है किस चीज़ में ज़्यादा कम्फर्टेबल है, या आपसे ये मैनेजेरियल टास्क ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, या फिर आप कहते हैं कि नहीं मैंने बस इंजॉय करना है। सो शी इज़ वन ऑफ देम के जो के कहते हैं कि मैं बस पकी पकाई खीर खाऊंगी, मैं बस इंजॉय करूंगी जी। ऑलराइट।

this music, and then this magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

All right. Welcome back once again. Radio Pakistan FM 101 के live on Lahore studio से आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को मेरा आपका साथ होगा ठीक जी 8 बजे तक. It's 7:39 PM on the dial. आज 6 जुलाई है जी और आप लोग को पता है कि 6 जुलाई को आज किसकी बर्थ एनिवर्सरी है. सो मैं थोड़ा सा याद कराती हूँ, थोड़ा सा हिंट देती हूँ आप लोग को, मे बी आप लोग का समझ आए. लाहौर की एक बड़ी मशहूर शाहरा है और वो इनके नाम पर है और बड़ी फेमस है और इस टाइम पर जो है वो एक फैशन हब है वो शाहरा और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पे और आपको हर किस्म की जो है ना वो एक्टिविटी वहाँ पे नज़र आती है, चहल पहल नज़र आती है. और होपफुली कुछ लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे बट मैं बताना चाह रही हूँ कि जी आज 6 जुलाई को जिनकी बात मैं करने जा रही हूँ वो पाकिस्तान एयरफोर्स के 1-स्टार फॉर्मर ऑफिसर हैं और इनका नाम है जी मोहम्मद महमूद आलम, जिनके नाम पे एक शाहरा है MM आलम और इनको लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता है, पीनट आलम भी कहा जाता है. वॉर हीरो है, पाकिस्तान फ्लाइंग एस है और फॉर्मर 1-स्टार रैंक ऑफिसर हैं और आज जो है वो इनको याद करते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है और सबको हम सबको याद है, हमने MM आलम का नाम इतना सुना है. 1965 की जंग जो थी जिसमें 7 सितंबर को जो है लेस देन अ मिनट, एक मिनट से भी कम टाइम में जो है 5 इंडियन हॉकर हंटर्स को जो है वो गिराया था और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उन्होंने सेट किया था और एस इन अ डे का जो डिजिग्नेशन है वो इनको दिया गया था इन्हीं के नाम पे. जनाब लाहौर की मशहूर शाहरा जिसका मैं बात कर रही थी MM आलम की, जो कि एक फैशन हब है, वो भी इनके नाम पर है और इसके अलावा भी जो है वो इनके नाम से एक पाकिस्तान पोस्ट का जो है वो टिकट भी जारी किया गया था और भी इसके अलावा जी जनाब इनको तमगात से नवाजा गया था और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि विद इन लेस देन अ मिनट जो है वो एक मिनट से भी कम अरसे में जो है कम टाइम में जो है 5 इंडियन हॉकर हंटर्स को, तैयारों को जो है वो गिराया गया था.

ऑलराइट, जैसे के साथ साथ दिसंबर 1965 में क्रिकेट टीम का नाम जो है एम आलम 11 के नाम से जो है वो ऑनर के लिए जो है वो पाकिस्तान में एक क्रिकेट टीम का नाम भी जो है वो एम आलम 11 के नाम से रखा गया था। और आज का जो दिन है यानी 6 जुलाई जो है वो हम याद कर रहे हैं एम आलम को, सितारे जुरत सिंह को नवाजा गया। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया कि एक बहुत अहम शाहरा है लाहौर की जो कि उनके नाम पर है, 1975 में ये नाम दिया गया था और ये गुलबर्ग में है। और इसके साथ साथ जी पी एफ बेस मियाँ वाली को भी जो है वो बाद में रीनेम कर दिया गया था पी एफ बेस एम आलम के नाम पे। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो कि इन्होंने बनाया था। और लेस देन इन अ मिनट जो है वो 5 इंडियन त्यारे जो है वो गिराए गए थे 1965 की जंग 7 सितंबर को। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है एम आलम के नाम पे। और जी इसके साथ साथ जी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। और टॉपिक में मैं बात कर रही थी मिनट जो है वो 5 इंडियन त्यारे जो है वो गिराए गए थे 1965 की जंग 7 सितंबर को। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है एम आलम के नाम पे। और जी इसके साथ साथ

और मज़े की बात ये, अभी जब मैं लामा बोल रही थी ना तो मुझे याद है हमारे एक कॉलर ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि आप जो है ना उर्दू में शो करते हैं तो किसी दिन पंजाबी में भी शो करें. तो मैं अब सोच रही थी आज, बल्कि मैंने सोचा था कि मैं इस टॉपिक को ना थोड़ा पंजाबी में बोल के देखूंगी, लेकिन अब मेरे में हिम्मत नहीं हो रही. अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा. तो जी, हम उर्दू में ही कंटिन्यू करते हैं 0422111000 पर. हम जो है ना आगे कॉल्स भी ले रहे हैं और इसके साथ साथ एक और ट्रैक ही जानी पड़ते हैं जी. जिस ट्रैक को एंजॉय करें फिर हम कॉल्स की तरफ आते हैं. 0422111001 पर जी लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है, साथ साथ

0: और जी लेट्स चेक के हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है 04111 पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सलीम टेलर इछरे बाजार।
0: जी सलीम साहब कैसे हैं?
1: जी बहुत जबरदस्त शो किया माशाल्लाह, अच्छी तरह सुपर डुपर शो आपका।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपका रोल किस तरफ है? अच्छा, मैं भूल गई थी आपने कहा था मुझे। अच्छा आपको पता है, मैंने आज सोचा हुआ था, मैंने ना मैंने थोड़ी प्रैक्टिस भी की थी कि मैं इसको ना पंजाबी में अनाउंस करूंगी टॉपिक को, लेकिन नहीं हो पाया।
1: अच्छा जी, आपके ये टॉपिक से याद आ गया।
0: जी जी,
1: जील सैफल मुख चले गए।
0: अच्छा,
1: मेरी ना बर्तन धोने की ड्यूटी लग गई जो हम ग्रुप के साथ दिए थे।
0: अच्छा ठीक है, आप लोगों ने दरिया के वहाँ पे झील के किनारे जो है पकाया था कुछ?
1: चूल्हा खराब हो गया तो वो काली वो आग छोड़ने लगा, वो हर बर्तन को कालक लग गई।
0: अच्छा,
1: अब झील सैफल लोग पे ठंडा पानी था, बर्फ का पानी पे, वो जहाँ पे लगाए वो कालक उतरे ना।
0: ग्लेशियर का पानी, ठीक है।
1: तो वो ये बड़ा मजेदार सफर रहा, और वो ये याद रहेगी चीज कि ठंडे पानी में, वहाँ तो गर्म पानी नहीं था, सहूलत नहीं थी।
0: जी जी,
1: तो जहाँ पे कालक लगाए वो अगली जगह पे और नहीं लग जाती।
0: ठीक है।
1: मैंने कहा ये क्या मुसीबत है।
0: अच्छा,
1: फिर मैंने अपने हार नहीं मानी, फिर ऐसे ही जो है ना हेल्प करने का हौसला मिला। दोस्तों ने समझाया कि यार जो बारी आए, चाहे तूफान हो, आंधी हो, जैसे मर्जी हो, निभानी है।
0: ठीक है,
1: मजबूत बनेगा बंदा।
0: ठीक है, इसका मतलब आप ट्रिप पे जाते हैं तो आप लोग डिवाइड करते हैं कि बर्तन धोने की बारी तुम्हारी है, अब तुम्हारी, अब तुम्हारी।
1: हम खाने वगैरह खुद बनाते हैं ना।
0: अच्छा,
1: हमारे साथ शेफ भी होते हैं खाने बनाने वाले, दोस्त वगैरह होते हैं, उसमें एक अलग ही मजा है।
0: हाँ ये बात तो है, मैं एग्री करती हूँ, मैंने भी करना है कभी एक्सपीरियंस ना कि खाना हम खुद बनाएं।
1: हम तो 10 साल जाते रहे हैं, अब ये 2-3 साल हो गए नहीं जा रहे।
0: ठीक है,
1: पाकिस्तान के शुमाली इलाके बहुत देखे हैं, चश्मे बहुत, चश्मों का पानी पिया है, फल खाए वहाँ पे, मजेदार।
0: आपने तो खूबसूरत ब्यूटी देखी है। फिर
1: डेट सारी दुआएं आपके लिए, और रजा भाई के वाले साहब बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे,
0: आमीन।
1: आपकी वजह। अच्छा ये मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि जो औरतें बाइक चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, बराए मेहरबानी इनको रास्ता दिया करें, जैसे हम एम्बुलेंस को रास्ता देते
0: जी
1: हैं,
0: क्योंकि
1: आगे जाने दे के ये जो है ना, ये पहले गुजर जाए।
0: ठीक है, ठीक है जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अल्लाह हाफिज़।
1: जिंदाबाद।
0: और जी हमारे साथ सलीम साहब मौजूद थे, और मुझे अभी याद आ गया कि इन्होंने मुझे कहा था आगाज में शो के कि आप जो है ना कोई एक शो पंजाबी में भी करें, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरी इतनी

0: है ना फ्लुएंट पंजाबी है भी नहीं तो वो कभी मौके मौके से निकलती है, और कभी मैं बोल भी जाऊँ तो मेरे लिसनर्स को शायद समझ आती हो या ना आती हो, मुझे नहीं पता। तो खैर जी, एनीवेज जी, इन्होंने जो है वो फुल एंजॉय किया हुआ है, और ये एक अच्छी बात होती है कि आप जा रहे हैं और आप ख़ुद पका भी रहे हैं। तो मुझे बड़ा शौक है कि मैं भी कभी एक्सपीरियंस करूँ कि कहीं कोई दरिया के किनारे आप बैठे हुए हैं और आप जो है ना वहाँ पर कुछ खुद बनाएँ, और उसका मज़ा ही और होता है। एनीवेज जी, एक और कॉलर हम शामिल कर लेते हैं जी, 04 111 पर, क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। और लेट्स सी जी, नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैम हमना खान, मुझे रमजान अनवर गुजर कहते हैं, मॉडल टाउन लाहौर से, नाम तो सुना होगा। अर्ज किया है, रोज करता हूँ मरम्मत अपनी, रोज करता हूँ मरम्मत अपनी, रोज नया ऐप निकल आता है। बहुत सी दुआओं के साथ तमहीज ज्यादा नहीं बांधूंगा, टाइम कम काबला सख्त, एक फोन से कॉल मिलाना आपके शो में महाल, अब दूसरे फोन में लोड कराना ही पड़ेगा। खुश आमदीद कहता हूँ खूबसूरत हसीन लाजवाब बाकमाल बदम में, रेडियो पाकिस्तान
0: पर, कैसे मिजाज में? अलहमदुल्ला, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया जी। अगर आप दो दो फोनों से, दो दो सिमों से भी कॉल करते हैं, बहुत शुक्रिया।
1: क्योंकि शो का लेवल हाई फाई हो गया ना, जिस शो में मैं आता हूँ वो शो ऊपर चल जाता है।
0: बड़ी मेहरबानी,
1: आपका शो होता है, आपकी बात होती है, मेरी कॉल होती है,
0: बिल्कुल
1: इंतजार होता है,
0: बिल्कुल
1: मेरी खुशफहमी है, और सारी जिंदगी 22 साल से खुशफहमी में मैंने मर जाना।
0: चले कोई बात नहीं जी, खुशफहमी भी होनी चाहिए,
1: ठीक
0: है
1: बिल्कुल। और शो अपनी मिसाल आप है, और मैं ना, मेरी शादी आज से 25 साल पहले ना, मेरे फुफा जी ने कहा ना, जब मैं नौकरी लगा ना
0: जी जी,
1: तो उसने कहा कि मैंने करानी है।
0: अच्छा।
1: मेरे वाल साहब को।
0: अच्छा।
1: तो वो वाल साहब ने कहा ठीक है जी, तुसी है कि रवारी कर लो। इसा मुसफर मेरी शादी हुई 25 साल पहले, मेरे बनोई जी था, फुफी का बेटा भी था, और फुफा जी ने, फुफी ने सारा ने मिलकर रिश्ता तय किया अपने शरीके में।
0: अच्छा।
1: अपने रिश्तेदार में मेरी शादी हुई, और बड़ी धूमधाम से हुई, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी इज्जत से हुई, और उनकी भी बड़ी इज्जत उस वक्त तक हुई। और जैसे ही हम अपने घर में आए, और कुछ दिनों के बाद वो जो खिलारा होता है मियां बीवी का, वो हुआ। और यकीन करें हमना साहब, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, शाम का वक्त है, आज मैं अल्लाह का शुक्र है बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजार रहा हूँ। जितने ताने मेरे बनोई को, मेरे पुत्र को, मेरी वालदा और मेरे वालद ने दे, मैं दोनों ये बीवी थे, लड़के हम दोनों ये बीवी थे, और समाके थे, और कहते बड़ा हमारे जिन्हें
0: नहीं तो उनको नेकी जो है ना, वो उनके गले पड़ गई।
1: मैं क्या ऐसी पड़ी यकीन करे अल्लाह को, उससे डर के कहता हूँ। मैं पता नहीं उस वक्त कहता था, मुझे समझ बूझ नहीं थी, या कोई अकल नहीं थी, या कोई ऐसा वक्त था, कहता ना यादें बाजू वो अल्फाज वो मैं नहीं बता सकता।
0: लेकिन अच्छी बात है कि आप वक्त के साथ आपने सीखा और आपने रिश्तों को निभाया भी।
1: और मैं शुक्र करना अल्लाह की दादा लख लख बारी, यकीन करें इतने ताने मेरे बनोई को, मेरे फुफड़ को, और मेरी फुफी को मिले, मैं आज तक बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और मैंने
0: तो तौबा कर ली
1: होगी। आपका सीनियर प्रोड्यूसर साहब है मन मन के, तो उनका एक शेर है, ए जो दुनियादारी है, ए जो दुनियादारी है साडी समझो भारी है, ए जो दुनियादारी है साडी समझो भारी है, साडे दोवे हाथ खड़े ने सानू इधर प्यारी है। यकीन करें इसको मैंने अपने पल्ले बांध लिया, मैं अब बैकफुट पर ही रहता हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना
0: है।
1: जो जिसको जिसकी वक्ती खुशी हो, उस बाद में वो अनाम मिले
0: ठीक है। आपने तौबा कर ली।
1: उस वक्त की तौबा करता हूँ, जो हम लड़ते थे मियां बीवी, उसकी भी माफी चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा रिकॉर्ड में मेरी फैमिली को ताने मिले, मेरी फैमिली की साथ हुई, वो भी वक्त से तौबा करता हूँ, कोई फख्र नहीं महसूस करता।
0: नहीं, अच्छी बात है कि आपने उस वक्त से सीखा है।
1: अल्लाह की दाद का शुक्र है, लाख लाख बार हम बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत जिंदगी अब गुजार रहे हैं।
0: अच्छी बात,
1: उस वक्त का वक्त आज तक नहीं भूलता। ये जो जिम्मेदारी होती है ना, ये आम बंदे के बस की बात नहीं है, ये बड़ा बड़ा बड़ा बंदा ले सकता है, और इसके फैसले का फैसले के बाद पता लगता है ये फैसला अच्छा किया है या बुरा किया।
0: ऐसे ही है।
1: अल्लाह पाक आपका इकबाल बुलंद करे, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके सुनने वालों के लिए बड़ी बेस्ट विशेज। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान
0: अल्लाह जी। रमजान अनवर जो हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप ये रिश्ते करवाते हैं और इस तरह का कुछ जिम्मेदारी लेते हैं तो उसमें जो है ना वो इस तरह के मामला हो जाते हैं और बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सही कह रहे हैं आप।

0: this.
1: All right, dear, time is very short. It's 7:54 PM on the dial. कोशिश करते हैं कि एक कॉल और शामिल कर लेते हैं. क्या कहते हैं? 0422111 पर लास्ट कॉल है. लेट्स सी हमारे साथ जी कौन होते हैं. और लेट्स सी जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम
2: वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
2: ऐसा इंसान बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं जिला
1: मियाँ वाली से बात कर रहे हैं. ठीक है.
2: लेकिन थोड़े ही टाइम बाद में भक्कर में दाखिल हो जाऊंगा.
1: ठीक है. मैंने सुना है आज भक्कर में बड़ी कोई तूफानी बारिश हुई है.
2: हाँ, पहले हम चश्मापुर में जो थे तो चश्मा पे हो गया तूफानी बारिश. चश्मा.
1: अच्छा.
2: तो उसके बाद फिर हम भक्कर की तरफ जा रहे हैं. भक्कर में काफी तबाही मचाई है बारिश.
1: ठीक है.
2: मेरे ख्याल से मैं आखिरी कॉलर हूँ.
1: जी जी, बिल्कुल आखिरी कॉलर है. बिल्कुल आखिरी कॉलर.
2: बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है. हम दो मोटरसाइकिल पे दो भाई आ रहे थे तो एक पीछे से कॉल मिला रहा था.
1: अच्छा.
2: चला रहा था तो
1: चले. अल्लाह खैर करे, आप खैरियत से पहुँचे. ठीक है.
2: हाँ, तो बहुत अच्छा लगा. तो आप जिम्मेदारी के बात कर रही थी ना.
1: जी जी.
2: या मैं चश्मे पे ही बात कर लूँ?
1: जैसे आपको बेहतर लगे.
2: वैसे थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज मैंने विजिट किया चश्मा बराज और दरे सिंध को.
1: वाह जी वाह वाह.
2: तो वहाँ पर हमारा जो बिजली का बिजली घर होते हैं जहाँ से बिजली तैयार होती है, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है सारे एरिया को, क्योंकि चश्मा बराज पे काफी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है जो कि लाहौर को भी जा रही है और दूसरे इलाकों को भी जा रही है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: तो
1: बिल्कुल.
2: वहाँ पर सारी मशीनरी और फिर चाइनीज के साथ मुलाकातें और सारा कुछ वो चलता रहा.
1: अच्छा.
2: और दरिया सिंध को भी करीब से देखा, फिर वो चश्मे वगैरह भी देखे और उसके साथ साथ इनके जो मशीनरी इस्तेमाल होती है ना हमारी बिजली पैदा करने में
1: जी,
2: वो सारा कुछ जब देखा तो वो एक अलग ही दुनिया.
1: अलग ही एक्सपीरियंस. आपने मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस लिया आज इसका मतलब.
2: हाँ. और वो साथ साथ जिनके चश्मा 1, चश्मा 2, चश्मा 3 और चश्मा 4, इसके बाद ये चल रहा है चश्मा 5, जिनके C5 प्रोजेक्ट इसका नाम है.
1: ठीक है.
2: और ये कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है उसका नाम है चाइना न्यूक्लियर, चाइना नेशनल न्यूक्लियर.
1: ठीक है. चाइनीज के साथ.
2: हाँ, चाइनीज के साथ.
1: ठीक है.
2: माशाल्लाह बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था है और वो चीजें देखी जो कभी नहीं देखी थी.
1: चले, अच्छी बात है. और नया कुछ सीखा आपने और इस तरह का जो है ना एक्सपीरियंस करना भी चाहिए.
2: इंशाल्लाह जी, मेरी जॉब वहाँ पे काफी उम्मीद है.
1: चले, अल्लाह खैर करे. अल्लाह आपके लिए बेहतर करे,
2: क्योंकि एज ए इलेक्ट्रीशियन मैंने वहाँ पे सेलेक्ट होना है तो वहाँ पे काम जा रही है.
1: ठीक है जी, हम आपके लिए दुआ करेंगे. अल्लाह आपके हक में बेहतर करे.
2: इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह. बाकी रजा भाई के वाले साहब के लिए मेरी दुआएं कर लो, सब जल्द उनको सेहत काम
1: करता. आमीन आमीन.
2: प्रवीण भाई की बातें हमने सुनी, बहुत अच्छा लगा. और अब्दुल भाई के लिए भी बहुत दुआएं.
1: चले जी, चले. अलाफिज अलाफिज. और राइट जी, एहसन खान हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपना एक नया एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. और बिल्कुल जी, चीन के साथ जो है हमारी एक बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत सारी जो चीनी कंपनियां हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रही हैं और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है. और अजी, जाते जाते मैं कुछ कमेंट्स शामिल कर लूँ जल्दी जल्दी से. नाम शामिल कर लेती हूँ. शाहिद हसन से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका भी. फरहाद मेमन थे हमारे साथ. रियाज भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया था जी, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का भी ज्वाइन करने का.

0: This is
1: सुनते रहिए FM 101 101 101

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो के

थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा।

0: वो एक्चुअली
1: जी
0: जी वो एक्चुअली अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि सुरमई रंग बहुत पसंद है आपको।
2: आपकी एक अमानत थी, वो लौटाने आया हूँ।
3: शदीद मोहब्बत करता हूँ आपसे।
4: तो तुम खुशी खुशी रहो यहाँ पे, नहीं रह गया।
5: हम भाग नहीं सकते।
6: उफ, क्या मेरी जान, शादी इज अ कॉम्प्रोमाइज।
7: छुट्टी नहीं मिली मुझे।
8: मैं तैयार हुई हूँ आपके लिए। साड़ी पहन।
9: पहन नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। I can't do this anymore। मुझसे ये शादी नहीं चल रही।
10: मुझे वापस घर बुला ले, प्लीज।
11: बार बार एक ही चीज।
12: You know what?

0: चलो।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: खवातीन हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

0: मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूं, यह है कमाल मेरा।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सफारतखानों को हिदायत की है कि वो मुल्की अफरादी कुव्वत के लिए बैरून मुल्क रोजगार के मौके की निशानदेही करें। सदर मम्लिकत चार रोजा सरकारी दौरे पर जमहूरिया किर्गिस्तान में है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के हिस्से के जायज हिस्से की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने के पुख्ताज़म का इजहार किया है। नेटो रहनुमाओं का दो रोजा सरबरा इजलास कल अंकरा में शुरू होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101. 101. 101.

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: कुक स्टूडियो सीजन 14।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

0: Tuned into the one above, 101 FM.
1: ये ज़िंदगी नहीं, अजीब है ना सारा।

जान रखो कि जो चीज तुम कुफार से लूट कर लाओ उसमें से पांचवा हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और अहले कराबत का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक व बातिल में फ़र्क करने के दिन यानी जंग बद्र में जिस दिन दोनों फौजों में मुठभेड़ हो गई अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।

0: अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनके पसे पुष्ट हों वो उनको देखकर भाग जाएं। अजब नहीं कि उनको इससे इबरत हो।
1: वो इम...

अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो अल्लाह के पूरे फरमा बरदार होंगे और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है।

ये पहले भी तालिबे फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए।

और इनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए, देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोजख सब काफिरों को घेरे हुए है।